0: हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके सागिद अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब राम चरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी।
1: ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
2: पूरा देश मर्माहत है। और जो नया सनातनी पैदा लिए हैं, अखिलेश यादव जिनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली से भून दिया, अब वो राम रक्षक बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने राम के अस्तित्व को ही नहीं माना, ये नकली बगुला भगत हैं जो ऐसा काम किया है। प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं।
3: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
4: मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक कन्वर साहब हैं। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले में आलोक कुमार वीएचपी के प्रमुख ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच कर रहे हैं चढ़ावा चोरी वाले मामले में, उन्हें पत्र लिखा है और कहा है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव ऐसे नेता जिन्होंने कि चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग दावे किए हैं, 20,000 करोड़ और इस तरीके की आंकड़े बताए हैं, उन्हें समन किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए इन दावों को लेकर के। क्या आपका जवाब?
5: देखिए, यह तो बेशर्मी की हद हो गई। एक तरफ तो चोरी और लूट हुआ, और बजाय इसके कुछ शर्मिंदा होने के, ये लोग चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार हो, भाजपा हो, उल्टा जिसको कहते हैं चोर कुतवाल को डांटे, तो यही बात हो रही है।
6: अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है।

0: question. But for those tasked with counting it, every rupee is now being watched more closely than ever before. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
1: Now, the political battle over the Ram Temple, a theft that's only intensifying, the BJP and the opposition parties have traded sharp accusations over the Chanda Chori. The BJP has called the opposition anti-Hindu, and we have the opposition there that's maintaining its stance, saying big fish are being shielded. The BJP president, Nitin Abin, has accused the opposition of being anti-Hindu and has claimed that it has repeatedly questioned the faith in a Lord temple. Then we have Yogi Adityanath alleging that the opposition has become anti-India in its bid to oppose the BJP. Hitting back at Shiv Sena UPD chief Uddhav Thackeray, accusing the government of misusing Hindutva and saying those looting Hindus are in power, calling the alleged temple theft an assault to Hindutva.
2: Chahe Ayodhya ka Prabhu Shri Ram ka mandir ho, aaj kuch log keh rahe hain ki kis prakar se वहां पर चर्चा कर रहे हैं. मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा. मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है. उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था. ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर. आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते.
3: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी. प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है. हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं. प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है. अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे.
1: And with that, we're slipping in a short break. On the other side, we'll get you another case of alleged dowry death. Stay with us.

0: Talking during counting hours has been banned. Employees are no longer allowed to converse with each other while notes are being counted. Even a trip to the washroom is no longer routine. Any employee found going to the bathroom repeatedly will now be monitored. Prolonged breaks are also discouraged. Sitting for long periods in the canteen is no longer permitted. One thing, however, has not changed. Counting staff continue to wear the same dark blue uniforms as before. Overhead, the entire counting room now falls under strict CCTV surveillance. And it isn't only the counting staff being watched. Even those posted in the monitoring room are not allowed to leave their seats while on duty. According to sources, the message behind the move is clear: to ensure complete transparency in the counting of donations and to make sure an incident like this is never repeated. For the lakhs of devotees who send in their offerings, faith has never been in question. But for those tasked with counting it, every rupee is now being watched more closely than ever before. With Mukesh Singh Sengar in Ayodhya, Bureau Report, NDTV.
1: Now, the political battle over the Ram Temple, a theft that's only intensifying, the BJP and the opposition parties have traded sharp accusations over the Chanda Chori. The BJP has called the opposition anti-Hindu, and we have the opposition there that's maintaining its stance, saying big fish are being shielded. The BJP president, Nitin Abin, has accused the opposition of being anti-Hindu and has claimed that it has repeatedly questioned the faith in a Lord temple. And we have Yogi Adityanath alleging that the opposition has become anti-India in its bid to oppose the BJP. Hitting back at Shiv Sena UPD chief Uddhav Thackeray, accusing the government of misusing Hindutva and saying those looting Hindus are in power, calling the alleged temple theft an assault to Hindutva.
2: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा मित्रों। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
3: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
1: And with that, we'll slip in a short break. On the other side, we'll get you another case of alleged dowry death. Stay with us.

0: जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
1: चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
2: अभी हिंदू भोरे हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो, अपना हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्यन मसाला।
4: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
5: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
6: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
7: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
8: It's also important that how they are reshaping the industries.
9: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
4: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
10: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
11: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज रूम वीकडेज एट 4 PM।
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन।
13: नाउ वाचिंग एनडीटीवी 24/7। द होप इज दैट बियॉन्ड दिस इलेक्शन, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of DJing.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
4: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
7: It's also important that how they are reshaping the industries.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी राउत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज़ रूम, वीकडेज एट 4 PM।

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्थर मसाला।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
4: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
5: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
6: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
7: It's also important that how they are reshaping the industries.
8: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
3: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
9: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज़ आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज़ दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द एनडीटीवी न्यूज़ रूम, वीकडेज़ एट 4 PM।

0: याली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते।
1: अभी हिंदू भोरे हो बाबरे हो पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोललोय हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
2: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
3: अरे चौकीदार कुछ चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I'm 100% sure some funds must have gone to them also.
4: राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया, जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के, राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया। सिंधी समाज ने 200 के करीब शिलाएं चांदी की दी, उन्हें भी लूट लिया, और अब ये सामने आ रहा है वृंदावन में भी लूट, बाबा केदारनाथ के घर में भी लूट।
5: मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवीपाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं, और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था, और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं।
6: सरकार पूरी प्रामाणिकता से कार्य कर रही है, और मैं कह सकता हूं कि यह इसलिए बहुत कष्टकारक है। कहा जाता है भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
7: उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह

0: के साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं,
1: चाहे अयोध्या का प्रभु श्रीराम का मंदिर हो, आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज है। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते।
2: अभी हिंदू भोले हो, बाबरे हो, पर मूर्ख नहीं हो। आपला हिंदुत्वाचा गैरफायदा घेऊन जर कोणी मंदिर लुटत असेल तर मी परवाच बोलले, आप हिंदू माफ नहीं करेगा। अयोध्या तो बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। आता मला भीती वाटायला लागली, जर ही अयोध्याची झाकी असेल तर काशी मथुरा किती लुटतील।
3: इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का घपला है, हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहां आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे।
4: अरे चौकीदार कुछ चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब, as if they don't know. In fact, I am 100% sure some funds must have gone to them also.
5: राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया, जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के, राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया। सिंधी समाज ने 200 के करीब शिलाएं चांदी की दी, उन्हें भी लूट लिया, और अब ये सामने आ रहा है वृंदावन में भी लूट, बाबा केदारनाथ के घर में भी लूट।
6: मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवीपाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं, और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूं। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था, और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था।

0: तब मैंने बोला था, आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं।
1: सरकार पूरी प्रामाणिकता से कार्य कर रही है और मैं कह सकता हूं कि यह इसलिए बहुत कष्टकारक है। कहा जाता है भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है कि शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
2: उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया आयोग से कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे।
3: Since these allegations came to light on 7th of June, temple administration has now made all processes and procedures far more stricter to ensure that those donation theft allegations are not just addressed, but processes are now much more stringent. What exactly those are, this report tells you.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसो थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा प्योर मसाला।
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
11: I'm delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
12: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
13: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
14: It's also important that how they are reshaping the industries.
15: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
10: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
16: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया, विटनेस्ड हिस्ट्री बीइंग मेड इन ग्लोबल कैपिटल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स,
17: दिस लोकेशन फ्रॉम टेल अवीव,
10: ब्रॉट क्लैरिटी टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी and international affairs.
18: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
19: The Ayatollah Khamenei is gone.
20: There has been a missile attack right behind you.
21: And we need to rush into a shelter.
22: Heading there.
23: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
10: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
9: सरसों से सरसों।
10: द फ्रंट लाइन

0: and Anil Mishra. Also, the police are now examining the assets of all those associated with the trust, including Champat Rai. The resignation of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra are expected to be discussed during that trust meeting, as Gauri pointed out. The meeting will review interim SIT findings and plan for a new administrative structure, including a potential CEO appointment. Financial statements for the year 25-26 fiscal year will also be presented for approval.
1: बजे बैठक है मंदिर परिसर में हो नित्य गोपाल दास जी करेंगे।
2: अरे इतना काम किया है संगठन ने कि यही नहीं किया, अयोध्या में किया, उज्जैन में किया और वाराणसी में किया। इतने लोग आने लगे कि कमरे बड़े महंगे जाने लगे, रिक्शे वालों का काम चल गया, सारे लोगों का काम बना है। बड़े उत्साह की बात, जो कसर होगी फैसले के बाद आगे जो बाकी है तो और हो जाए।
0: The political battle over the Ram Mandir theft has also intensified. BJP and opposition parties have traded sharp accusations over the donation row. BJP has called the opposition anti-Hindu, while the opposition has maintained its stance, saying big fish are being shielded. BJP President Nitin Naveen has accused the opposition of being anti-Hindu and claimed it has repeatedly questioned the faith in Lord Ram. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath alleged that the opposition has become anti-India in its bid to oppose the BJP. Hitting back, Shiv Sena UBT Chief Uddhav Thackeray accused the government of misusing Hindutva and said those looting Hindus are in power, calling the alleged temple theft an insult to Hindutva.
3: जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं, भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तबाहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदों का अपमान करते हैं।
4: अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था। और ये लोग कहते थे कि अयोध्या धाम में रामलला पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए, ये भी स्पष्ट नहीं है। और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। यही लोग हैं जो भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
5: अरे चौकीदार कुर चोर है, वो क्या पनिशमेंट देंगे? एंड हु आर दे टू सीक पनिशमेंट? व्हाई डिड दे वेट फॉर सो लॉन्ग? उनके भाई साहब भाई लोग ही किए ना ये सब, एज इफ दे डोंट नो। इनफैक्ट आई एम 100% श्योर सम फंड्स मस्ट हैव गॉन टू देम आल्सो।
6: राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। अलग अलग तरीकों से चढ़ावे में भगवान राम जी के मंदिर को लूटा गया, जमीन खरीद में सैकड़ों हजारों करोड़ में लोगों के राम भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे को लूटा गया। सिंधी समाज ने 200 के करीब शिलाएं चांदी की दी, उन्हें भी लूट लिया। और अब ये सामने आ रहा है वृंदावन में भी लूट, बाबा केदारनाथ के घर में भी लूट।
7: मैं पहला व्यक्ति हूं जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवीपाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूं। और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख

0: रहा हूं। अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था, और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया। और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला था, तब मैंने बोला था। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं।
1: सरकार पूरी प्रामाणिकता से कार्य कर रही है, और मैं कह सकता हूं कि ये इसलिए बहुत कष्टकारक है। कहा जाता है भगवान राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर यदि राम के धाम में राम के नाम पर किसी ने पाप किया है तो उसे मुझे लगता है शायद साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते।
2: उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया आयोग से कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे।
3: In news just coming in, trouble appears to be mounting for Diljit Dosanjh's controversial film Satluj. Advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism, violent extremism and separatist ideology, according to him, which is linked to Punjab's insurgency era of the 1980s and 90s. In his complaint, Jindal has sought the registration of an FIR against actor Dosanjh and the film's director and the streaming platform. We have Nupur now joining me live. More trouble, Nupur, for Diljit Dosanjh as well as the cast and the movie. The latest complaint adds to the growing controversy surrounding the film already.
4: Well, Vedika, the main allegation that the lawyer Vineet Jindal has made in his letter to MHA seems to suggest that the movie was released without implementing the cuts recommended by the CBFC. Now, the letter which has been addressed to the MHA reads that despite several cuts suggested by the CBFC, and the petition was further filed against them by the filmmakers in Bombay High Court. However, that was withdrawn. Now, the lawyer in his letter to the MHA has alleged that they have changed the name of the movie from Punjab 1985 to Satluj, but they have not implemented the cuts suggested by the CBFC. So this is the basic grounds on which he is seeking action against the filmmakers and Diljit Dosanjh, alleging that his movie is a kind of spreading and promoting the Khalistani ideology and communal can in fact instigate communal violence as well. So this is the letter, crux of the letter that has been written to the MHA. However, it remains to be seen whether the MHA would actually act on it or whether there is any evidence to back it.
3: Nupur, as always, thanks for joining me here on Breaking Ground. Now, after years of delays and controversy, Diljit Dosanjh's long-awaited film Punjab 95, which was released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from the streaming platform in India. As per sources, the decision to take down Satluj was taken after careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say concerns were raised over certain portions of the film. Dosanjh has broken his silence on the ban with a cryptic social media post stating, and I quote him here, "I challenge darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Politics has also broken out over the move, with Akali Dal chief calling it an assault on collective memory.
5: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ रिलीज़ किया। जे दस के रिलीज़ करते दो दिन पहला प्रमोट करते फिर तो फिर नहीं सी लगनी।

0: ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
1: ਦੇਖੀਏ, 90 ਕੇ ਦਸ਼ਕ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਬੇਗੁਨਾਹੋਂ ਕਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁਆ, ਉਨਕੋ ਮਾਰਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਉਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੇ ਆਪ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਉਨ ਐਸੇ 2000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਠਾਇਆ ਥਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੀ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਅਬ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 95 ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਨਿਆ ਸਤਲੁਜ ਰੱਖ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਥਾਏ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਭਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ।
2: In news from West Bengal, politics has intensified over the death of an 11-year-old girl in West Bengal's Boroipur. Trinamool Congress has accused the BJP of trying to block the Chief Minister's visit, calling it an attack on democratic rights. Mamata Banerjee alleged she was prevented from meeting the victim's family, claiming heavy police deployment and barricades were used to restrict her movement. She called the incident shocking and said the situation has become dangerous, raising serious concerns over women's safety in the state. Meanwhile, Abhishek Banerjee spoke to the victim's mother, inquiring about the police investigations and action taken on the family's complaint. Earlier, the minor girl's body was recovered from the area, triggering widespread protests. Police have arrested 4 people in connection with this case.
3: Namaskar Mashima, kya hona chahiye? আপনারা শক্ত থাকুন, আপনারা শক্ত থাকুন। আপনার কি এক মেয়ে? আপনারা থানায় কমপ্লেন করেছেন? পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এখনো? যে ছেলেটি ধরা পড়েছিল সে কি যুক্ত ছিল এর সাথে? তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে?
4: इसमें तुरंत कार्रवाई किया, हम लोग तुरंत कार्रवाई किया है। उनका गार्डियन का साथ भी कल मेरा बात हुआ है। उनका गार्डियन का जो जिस उनका जो डिमांड नहीं, लेजिटिमेट जिनका जो सुझाव था, उम्मीद था सरकार के ऊपर, सरकार पूरा करना चालू कर दिया। 4 आदमी के खिलाफ FIR हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए कहूंगा। पिछले टाइम पुलिस के हर इश्यू में पुलिस को काम करने के लिए रुकावट था, पुलिस को काम करने के लिए इजाजत नहीं था, सब काम राजनीति से आधारित था। हम लोग तमन्ना को 13 आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। यहाँ अभी कुछ देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा।
5: दीदी जाने के लिए तैयार थी लेकिन वो लोग जाने नहीं दे रहा है, पुलिस देके बैरिकेड करके रखा है। ये गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। अभी BJP का 2 महीना का जो रूल हुआ उसमें इतना सारे रेप हुआ, अर्जीगर में रेप हुआ, बिहला ससुना में रेप हुआ, बारीपुर में रेप हुआ, माइनॉरिटी लड़की का पर रेप हुआ, ऐसा ऐसा होगा। इसको प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे ही, हम लोग अपोजिशन है, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ममता जी को निकालने नहीं दिया, ये नहीं चलेगा, BJP का तानाशाही नहीं चलेगा।
6: ये क्या चल रहा है बंगाल में, ये क्या चल रहा है कोलकाता में, क्या चल रहा है? आप सबको पता है बारुईपुर में क्या हुआ। हम 1 घंटा पहले यहाँ से गए, आपको हम बोले थे कि विमानदा का एरिया है, विमानदा जरूर जाएंगे। तो दीदी तो मास लीडर है, आज का बात नहीं, दीदी कब की, कितने बार का MP है, कितने बार का वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितने बार का वो चीफ मिनिस्टर थे, वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही। तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे बारुईपुर में, इतना हादसा हुआ, इतना घिनौना हादसा हुआ, तो वो जाने के लिए सोचे थे। बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है, ये क्या नजरबंदी करके दीदी को वो रुक पाएंगे, क्या सोच रहे हैं ये लोग?
7: रास्ता में आके घूमती है, कौन हाउस अरेस्ट करेगा? उनको भी ना अंडा अंडा खाना पड़े, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग किया गया।
2: Slipping a short break, when we return, Iran begins a procession through Tehran for the funeral of its late Supreme Leader Khamenei. We bring you a ground report.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s

0: We have some breaking updates from Punjab. The Channi Randhawa faction has decided that until Amarinder Singh Raja Waring is removed from the post of Punjab Congress president, its leaders will not participate in Punjab Congress programs where he's present in his capacity as the state party chief. As per sources, former cabinet minister and MLA Pargat Singh, along with a few other MLAs, has left for Delhi to convey the concerns of Channi Randhawa faction to the Congress High Command, despite senior Congress leader Bhupesh Baghel visiting Chandigarh in an effort to resolve the dispute. The faction's decision to directly send its leaders to the party High Command in Delhi is being viewed as a significant escalation of the internal rebellion. We're joined by Gurpreet on this. Gurpreet, before we go to Gurpreet, some more details as far as this faction is concerned. As per sources, former cabinet minister and MLA Pargat Singh, along with few others, have in fact left for Delhi to convey the concerns as far as the internal party disputes are concerned of the Channi Randhawa faction to the Congress High Command, despite senior Congress leader Bhupesh Baghel visiting.
1: ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਮ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ
2: ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸਰ
1: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ सुनिए आप
3: लेकिन चन्नी साहब तो ओपनली डाल रहे हैं कि उसी मीटिंग को कंटिन्यू करा मैंने चन्नी साहब तो ओपनली फोटो डाल के कह रहे हैं मोरिंडा की बैठक को कंटिन्यू किया वो बैठक आपके खिलाफ थी
1: कहाँ लिखा उसने
3: उन्होंने लिखा है उसमें
1: कंटिन्यूस नो नो नो
3: दोबारा फोटो डाली है सर उन्होंने
1: आपने क्या लिखा उन्होंने क्या कि मोरिंडा की मीटिंग को कंटिन्यू
3: हाँ उन्होंने लिखा है कि वो दिन की बैठक
1: सुनिए सुनिए उन्होंने पंजाबी में कुछ और लिखा है इंग्लिश में कुछ और लिखा होगा मेरे को नहीं पता सुनिए दूसरी बात जो मोरिंडा मीटिंग थी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीओके की मीटिंग थी नहीं वो मोरिंडा मीटिंग के बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि मोरिंडा मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चन्नी साहब के घर में थी जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं बहुत से लोग उनका स्वागत करने गए बहुत से लोग उनको मिलने गए जो 100 लोग नहीं मिलने गए हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी मिलने जाएं अब आपने तो मोरिंडा मीटिंग को बता दिया कि जैसे पीओके की मीटिंग थी ऐसा मत कीजिए मेरी आपसे गुजारिश है वो मीटिंग भी कांग्रेस की मजबूती के लिए थी और अज दी मीटिंग भी जेडी हुई है कांग्रेस पार्टी को मजबूती वास्ते एक दो दिन
3: लेकिन सर आपके बिना मीटिंग हो रही है सर
1: एक दो दिन दे विच
4: सुनने में आया
1: है एक दो दिन दे विच तुसी देखोगे कि कांग्रेस पार्टी के सब लीडर एक मंच पे होंगे तुसी तो मीडिया ने तो कल ही चला रखी
5: यानी सर अगली बैठक तक ना होगी
1: मीडिया ने तो कल ही चला रखा है कि चन्नी साहब दिल्ली चले गए चन्नी साहब तो इथे
4: लेकिन सुन दे लीडर तो चले गए
6: सुन राजा जी सुन
4: आपको और सारे बैठक
1: आप भाई साहब आपका तो ना लड़ाने का मन है हमें अगर ना भी मल के वो जो जो जो एक मिनट सब लीडर बाजवा साहब कहाँ थे सोनी साहब कहाँ थे राणा केपी साहब कहाँ थे अरुणा चौधरी जी कहाँ थे मेरे कहने का मतलब मेरे पास आपकी हर चीज का जवाब है
4: कुछ लोगों के नाल थोड़ी गल भी हुई है कि
1: गल नहीं इनमें इनमें से जो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं उनके साथ सुबह मेरी बैठक हुई है और हम सब लोग इकट्ठे हैं मैं इंटरनल जो हमारा पारिवारिक अगर कोई बात है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता मैंने पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूं कांग्रेस परिवार इकट्ठा है और प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है आप इसको खामखा विवाद ना बनाएं कि आज मीटिंग वहां है आज मीटिंग वहां है मीटिंग निरंतर होगी आज आप बता देंगे राजा के घर में भी बैंस साहब और मोहित महिंद्रा और इन लोगों की मीटिंग हुई ऐसा मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं अब हम खड़े होंगे फोटो खींचेगी जाएगी
2: तो कहने का मतलब लड़ाई नहीं है
4: वो 100%
2: अब सुनिए आप खराब कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपको किसी ने भेजा है कि आपने लड़ाई दिखानी है, कवर अप नहीं। सुनिए किसी ने स्टेटमेंट दिया नहीं है, तुम गलत बात कर रहे हो। चन्नी साहब का स्टेटमेंट दिखाओ, एक मिनट सुनिए। चन्नी साहब एक मिनट सुनिए सुनिए एक मिनट मेरे को उसका जवाब देने दो। एक मिनट, चन्नी साहब के घर में बैठक हुई, एक मिनट।
0: राइट, सो दोज आर द रिएक्शंस कमिंग इन। इन फैक्ट अमरिंदर राजा वॉरिंग रियली डाउन प्लेइंग द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज ब्रूइंग इन विद इन द कांग्रेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। लेट मी गो स्ट्रेट टू गुरप्रीत ऑन दिस। गुरप्रीत, द कॉन्फ्लिक्ट विद इन पंजाब कांग्रेस सीम टू बी इंटेंसिफाइंग विद चन्नी रंधावा फैक्शन डिसाइडिंग टू बॉयकॉट पंजाब कांग्रेस प्रोग्राम्स अटेंडेड बाय स्टेट पार्टी चीफ अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग अंटिल ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पंजाब Congress president, but we just heard Raja warring there. He has completely downplayed this tussle and goes on to say that Congress is united in Punjab.
6: Yes, this is the reaction which we have got from Amrinder Singh Raja Wadding. He has already said that there is no differences within the party and party is united. But if we can see the sequence of event, we have seen Charanjit Singh Channi, the former Chief Minister of Punjab. He has already held today again meeting in which we have seen the top leader of Punjab Congress, Sukhjinder Singh Randhawa, Pargat Singh and other leaders has also joined Channi camp. What we have learned from the sources also, most of the leaders, they are going to meet party High Command in Delhi, where as we have seen the Punjab in charge Bhupesh Baghel is also coming to Chandigarh, where he is going to hold marathon meeting with all the workers to just understand what are the difference between both the camps, Charanjit Singh Channi as well as Amrinder Singh Raja Wadding camp. So it's a very very challenging for Congress how to deal the situation, because this rift and this infighting which is going on between the camp of Charanjit Singh Channi as well as Amrinder Singh Raja Wadding, that has already been intensified, and a lot of workers and a lot of Congress leaders, they are trying to mount a lot of pressure on the party high command. What we have learned from the sources within the Congress, the way they are mounting pressure on the party high command, saying that they will boycott all the program which will be held by Amrinder Singh Raja Wadding, that seems it's a pressure tactics from Charanjit Singh Channi's camp to mount a pressure on party high command so that they will revisit the decision which they have earlier taken. Because we have seen when the first meeting had been held at Morinda, where the former Chief Minister of Punjab, Charanjit Singh Channi, he has called all the top leaders and they discussed all the political strategy, how they are going to mount pressure on the party high command that Charanjit Singh Channi.
0: Right, so seeming
6: should be
0: escalation of the internal rebellion within the Congress party is what we are seeing. Gurpreet, thank you for bringing all those details. Let's shift our focus now. After years of delays and controversy, Diljit Dosanjh's long-awaited film Punjab 95, which was released on Zee5 under the new title Satluj, has been taken down from the streaming platform in India. As per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say concerns were raised over certain portions of the film. Diljit has now broken his silence on the ban of this film with a cryptic social media post saying, "I challenge darkness." He also said that now film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों
5: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
6: I'm delighted to be a chairman of India

रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की, और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए, और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस, जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है, अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया, उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब तक यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है, उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए, और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और
झूठ

का प्रचार करते हैं, इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई, तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काकभुषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है, और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये पांच तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है, और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक SIT की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं, और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है, और उसमें उसके जो उसकी जो तलाश करनी है वह SIT कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए, और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे, और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आवाहन करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए, और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये किया जाने वाला, खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे, इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आवाहन है कि आप सब लोग इस
कार्य में धैर्य रखें।

0: Right, so latest coming in from Ayodhya after a three-hour-long meeting of the Temple Trust. The trust coming out and said Champak Rai has voluntarily resigned. They also said that Champak Rai and Anil's resignation has been accepted, Anil Misra's. They've also come out and, in fact, praised Champak Rai, saying that he has shown maturity and the SIT's probing, probing the theft. Let's listen in some more to some more reactions.
1: बहुत आग्रही रहेंगे इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं सभी को कष्ट हुआ है राम भक्तों को कष्ट हुआ है अभी इस में कहीं ना कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी जिसका फायदा लोगों ने उठाया तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं कहीं भी कहीं छूटा हुआ है उसको सबसे पहले बंद करना इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो भविष्य में इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा इस जो समाज में बना है माहौल उसके कारण हमारे न्यास की के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग न्यासी लोग मिलकर के ये सब इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और पुनर इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर स्थापित करेंगे बंधुओं ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं दान करते हैं अर्पित करते हैं उसका हम जो संघ के जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसको उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है क्योंकि बीच में उस तरफ को जानकारी कुछ प्रोसेस में होता तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा दिखाया जाएगा सभी को बताया जाएगा जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा ऐसा मेरा विश्वास है इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा सहकार्य लगेगा साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो

0: सत्य बांधते हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है जो न्यास के लोग हैं, उनसे जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रहता रखा जाएगा, ये आपको मैं निवेदन करता हूं।
1: Gentlemen, you just heard right now, he is Krishna Mohan. He has been appointed Interim General Secretary of the Ram Mandir Trust in place of Champat Rai, who resigned earlier, and his resignation was accepted. Some very, very interesting things. But before I tell you about how the entire reasoning has been given for how and why the resignation of Dr. Anil Mishra, trustee, and Champat Rai, the General Secretary of the Ram Mandir Trust, were accepted. These images that you see on your screen right now are two very important images, because one is a gold-plated Ramcharitmanas and the other is a silver statue of a Kak Busundi. Now, the importance of these images is that people who had donated it, both of these things were donated to the Ram Mandir, and people who had made that donation had expressed apprehension that it has gone missing, that it has been stolen. Now these pictures have been put out by the Ram Mandir Trust to assure people that no such theft has taken place, that this was kept at the temple all along. Now look, there has been a lot of problems. There have been a lot of problems in the manner in which the Ram Temple Trust has functioned, especially when it comes to handling of the donations. But a lot of apprehensions, a lot of claims have also crept in, which now those doubts are being dispelled by the trust. But let's now come to the big story of the moment. Champat Rai, Dr. Anil Mishra, both of them have resigned from the Ram Mandir Trust. But what is very important is what the treasurer, Govind Dev Giri, said about the circumstances under which those resignations have taken place. Now, what did Govind Dev Giriji say? He said that the entire trust, when the meeting took place, everyone was extremely...
2: Sarkari jo company hai, Mint Corporation... अशुद्धियों को दूर करके उनको बार्स में कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे 900 किलोग्राम से कुछ ज्यादा सोना ओरिजिनल भेंट से बदलकर बार में हो गया है, चांदी। और जो जो चीजें गलाई गई उसका भी रिकॉर्ड उपलब्ध है, इसलिए चांदी का भी जिन्होंने सामान दिया था वो उसका सत्यापन कर सकते। ट्रस्ट ने पत्रकारों से, राजनीतिज्ञों से और बाकी लोगों में से भी जिनके पास में कुछ कुछ जानकारियां हैं, उन सब से कहा है कि जांच में उनका भी सहयोग मिलना अच्छा रहेगा। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन सबने इसके इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देना चाहिए। उनके पास की जानकारी, उनके पास में जो उसके लिए कागज प्रमाण है, जिन गवाहों के नाम पता है, वे भी सहायता करेंगे तो सत्य का जल्दी पता लगाया जा सकेगा। ट्रस्टियों ने इस बात को बताया है कि सारे दुष्प्रचार के बावजूद ट्रस्ट में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है, और लोगों की आवाजाही पहले की तरह ही बनी हुई है। ये हमारी जब जानकारी मिली, जो ट्रस्टियों ने बताया है वो मैंने आपसे शेयर किया।
1: That is the first reaction you heard from the global chief of the Vishwa Hindu Parishad, Dr. Alok Kumar, as well. My colleague Gauri Dwivedi joins us live from Ayodhya, where she has been reporting every single development since the morning. At least three things are absolutely clear now, Gauri, that Dr. Anil Mishra, Champat Rai have resigned. Second, that Krishna Mohan has been appointed.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाह मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
12: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
11: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: Dalmit Singh ji.
1: Yeah. Can you repeat your question, please?
0: Yes, my question was that it's perplexing why the Congress is still on the side of Satluj, even though the atrocities or the alleged atrocities were committed at a time when the CM and PM were both from the Congress.
1: You see, first of all, I think talking about cholera does not mean being anti-national. It means asking whether every citizen has dignity or whether every family deserves truth, first of all. And so for the Congress is concerned, yes, particularly Sikh community or the Punjabis or those who have seen those black days, it was those atrocities or Operation Blue Star and the killing of the Sikh or the genocide in New Delhi and other areas what happened during the time of Congress. And impression was made, or it was in many years, in recent many years, people, those who were when they recall those time, they try to make people, other political party, they try to make people hate for the Congress. But on the contrary, you see the history in the recent years. The Congress, they formed the government in Punjab. Congress, who recently in 2024, they won 7 seats out of 13 seats. So it is not good, in fact, I feel, to keep the hate alive. Yes, but silence does not heal history. You know, honest conversation honi chahiye.
0: Is this an honest conversation? And that really is the crux of the argument. Is this an honest conversation? Because the fear is that this seems to paint Punjab and that period in a certain light, that you've got all of Punjab police being villainized.
1: So listen, Padmaja, I have a personal question to many national TVs and my colleague, those who are at the national TV. Anything happen in Punjab, anything, a small incident like a blast or anything, and the national TV channels and all the media, they paint whole of the Punjab in one paint. They made whole of the Punjab with the same wood. You know, then everybody has to understand. And, you know, whole of Punjab is 3 crore people living in Punjab. And an incident which was dismay, you know, few people have been involved into it, like a Janala incident when Amritpal was there. And the TV channels were making all of the Punjab into, I mean, in a buffer state or something like that. Punjab jal raha hai. You know, we should also understand. And we should understand the pain. That is what I think so.
0: No, but that's not true at all. The entire state is not painted in the same shade. In fact, it is very carefully, the distinction is made between the people who would want to follow a certain kind of ideology. And I think that is the argument being made, that those forces should not be allowed to get a fresh voice. And that could be a possibility. I think that is the argument being forwarded for those who are worried about this film.
1: But isn't it irony when a film which is about the missing people is itself made unavailable? Isn't it the symbolism cannot be ignored? Aapne film ko pause kar diya, but I'm telling you, Padmaja, this film is available on each telephone mobile number.
0: You know, yeah, that's correct. So look, once something is out there, it makes no sense to pull it off from public platforms, because eventually it will make its way to people. My question is more fundamental, that is this film a problem today if it is being made, if it is being watched, or let everything be out there in the public and be debated? Avishkar Singhvi, even uncomfortable truths, even if slightly dramatized, even if hugely exaggerated, at least should be debated today.
2: Well, Padmaja, the answer to that would be that, you know, a society is determined by discussing uncomfortable stories more than it is determined by discussing very comfortable, easy stories. And the truth should be out there is the first point. However, that, you know, politically it might be slightly confusing, but legally it is not. The threshold for banning a movie to go to cinema, to go through the censor board, is very different from going to OTT. Whether this is a platform's decision to withdraw it or whether it is a decision of the CBFC is still to be known, because it came on the platform and it was withdrawn subsequently. That's the first point on procedure. However, the threshold for removing content is literally the phrase which I will borrow, the spark in a powder keg. And that is the threshold required to ban a particular content, because the threshold to ban free speech is fairly high in our country today. The issue with regard to this movie, and like many other depictions that have been there, available on OTT and in cinema, have depicted real stories, and which have painted the state administration, the police in very poor light. You see the Asava Bapu case. You see you see several other cases like that. Rahim's case. I can list out several cases. But the threshold is that you should not ban content merely because a particular section of society may find it offensive. The idea is to deliberate more. Silence is not the answer. The idea is to let more discussions come out. And in specifically in this scenario, where my friend Mr. Robin said it's a movie about missing persons. So the movie itself should not go missing. Otherwise, it will be irony of sorts. So, I think that's the first thing we should understand, that legally the threshold is very, very high. This is yet again testing the limits of free speech. And constitutionally, I don't need to tell you the judgments of Anuradha Bhasin, Ranga Raj, etc. The Supreme Court has repeatedly outlined, unless it incites violence on the streets, unless the fear is that people would come to the streets and come in and demonstrating and starting actually.
0: But that is the fear. That is the argument being given. That here is a separatist movement that was quashed many decades ago. It may get wind again, thanks to this film.
2: No, so that fear is merely an apprehension. Whether that fear is a plausible, realistic, and an actual, real, imminent danger on the ground remains to be seen.
0: But who gets to decide that?
2: If the personally, I have not.
0: Or the CBFC today thinks that there is a problematic parts of it, which is what sources are telling us, that there are problematic parts to this film, which may sort of fan that kind of sentiment again. Who takes that decision?
2: First things first, the CBSC's jurisdiction is only for releasing in theatrical areas. It's not for OTT.
0: Correct.
2: The first point is there. And this was a platform's decision to withdraw. So that distinction must be very clearly made. Whether I'm still not clear whether the CBSC has intervened with the OTT platform called Zee and told them to withdraw it, or whether it was a platform's own decision to withdraw the content. That also must be understood. So once the CBFC, and clearly there's been 127 cuts, as you mentioned, so there is some back and forth on this, but I still think that the movie should be released, should be there for people to see. And even if there is the banning order, where is the banning order? Has the government banned it? That order is judicially, has to test the scrutiny of the courts.
0: Okay, testing the limits of free speech. Kushal wants to respond.
3: As far as I'm concerned, can I just say a word about the CBSC? What kind of a nanny state is India where we have CBFC? Like, hum log kya chote kaake hain? I'm using a Punjabi word for purpose. Are we chota kakas that we need, vade log to come and tell us, you can see this, you cannot see that. Once again, and, I want to take this opportunity to talk about the other horrific side of Punjab also. I'm reading from an article, and I know, first of all, I support the movie to be out. But can we also talk about this? This was on January 15, 1991. It was written in the media at that time. There is no such thing as a government. There is no such thing as a society with its own corrective mechanisms. There is the police and there are terrorists. Between the two, only the terrorists can promise you peace. That is, if you make your peace with them. So when militants come calling in the night, often by first scaling the rear wall with a ladder and then clambering down the roof, you don't shout for help. You go and cook for them. When they send you a note to pay the swand, the traditional Sikh religious offering of 1/10 of your earning to the community, you pay. If you're a school teacher, you learn the new curriculum. No Janaganamana, no Hindi, no skirts, trousers or frocks in your school. Default and the gunmen will come calling. As they did last fortnight with Nirmal Kanta, headmistress of the government school at Rajpura near Patiala. All she wanted was a few weeks before her girls could change from frocks to salwar kameez. Her girls, she argued, came from poor factory workers' families. For arguing, she got 2 bullets through her belly. This is also Punjab. Unfortunately, I want to ask this question to every Punjabi. If we made a movie like this, would Punjab release it? if we make a movie showing the dark side of Punjab, and believe me, I am someone who's very much on the side of Punjabi sentiments. My family suffered through that torturous time too. I had one family member shot at, two kidnapped. But would Punjabis be comfortable with a movie like this? It's the hypocrisy that bothers me. I am always on the side of freedom, no matter how much of a lie or a propaganda that freedom-based RDI is. But the point is, there is no talk about this horror time of Punjab where others were also at the receiving end.
0: Ramnik Maan.
4: Oh, he's right. As a matter of fact, I have very clearly articulated that every person killed during those days was a Punjabi. Why do you just want to single out Sikhs? Why don't you talk about Hindus? Why don't you talk about the police officers and the officials killed? See, Kharkuvad was in nobody's favor. Good riddance, all right. But I am, you know, now saying that if the truth is being told about how the police had gone through and killed people extrajudicially, that should be, it's an uncomfortable truth. But truth be told, that should not be hidden from people. You know, it seems very suspicious. Why would a platform first release and then, you know, take it off?
0: No, but how do you decide whether it is the truth or it is an exaggeration and a dangerous exaggeration? Even let me just give you one of the examples. So some of the clips, and some of the conversation is around two main things. For example, the demonizing of KPS Gill altogether. Yes, some excesses may have happened, but to demonize him altogether or to talk about the assassination of Beyant Singh almost in a glorified manner, can that be allowed in a film in the interest of free speech?
4: No, a glorification of murder of any person should not be allowed. That is one. Let's be very clear on that.
0: But that is what is being done in the film to those who watched it.
4: Even Punjab police is not seen as an angel even today. You talk to somebody like me, I've been booked by the Punjab police a couple of times.
0: Arre sir, but we are just talking about what the film shows from 1995.
4: They are no angels.
0: What is happening today is very different from what Punjab saw in 1995. Now you're talking about the police.
4: Yes, if it was 1995, I would have been...
0: I'm talking about the police in 1995, which was dealing with insurgency. And yes, while excessive may have happened at that time, and by the way, were punished, including Mr. Kalra himself, whose murder was subjected to a CBI investigation and subsequent prosecution. My question is, can such harsh truths, as you label them, be allowed in a film where you've got a chief minister being assassinated and no critical commentary being made on it?
4: See, if it was glorified, it was wrong. I haven't seen the movie, so I'll not be able to say whether it was glorified or not. But if it was glorified in the movie, it's not done. Anyone's murder should not be glorified, but everyone deserves dignity, respect, and justice.
0: But that's the deal. That is the reason why the CBFC is uncomfortable with it, because such glorification...
4: I don't know that. Like, you know, this was the first question you asked me. And I said, you know, this needs to be put to the CBFC.
0: Ravinder Singh Robin, if you've got these two specific instances being quoted, why people are uncomfortable with the film, can they be dismissed out of hand?
1: Okay, Padmaja, let me tell you, Jaswant Singh Kalra did not fight for revenge. He fought for the truth. For the people, those who actually, family, those lost their dear ones, and they didn't know where they gone. And along with that, you know, who has revealed out about the murder of Jaswant Singh Kalra? Again, it was a policeman, Kuldeep Singh. He brought the story in. He is the person who, with a heavy heart, went to the media person in 96, and he brought the truth. Same police person, and he was also pictured in the film. He was given a due, jo bhi uska banta tha. He was shown in like that. So far, yes, I have yet to see the picture. First of all, halaki wo WhatsApp pe zarur aayi hai, lekin abhi usko puri tarah dekhna hai. But yes, glorify again. I'm with Mr. Maan. Glorify of any murder shouldn't be there. But uske liye bhi Padmaja, we are talking. If film comes out, there are ways. People will certainly decline if agar unhe koi cheez nahi achhi lagti. But that doesn't mean, you know, a strong democracy should not be afraid of memories.
0: Kushal.
1: This is not about a film. It is about whether you know, difficult history can be discussed. It should be discussed.
0: Is this history at all? That is the main question. You keep saying that harsh truths and difficult histories should be discussed. And I 100% agree. But if something is distorted, this is not history, according to whoever
1: who will decide.
0: This is less history, more distortion, exaggeration, and perhaps borderline dangerous.
1: Who will decide?
0: Yeah. That is the million-dollar question. Who will decide? At least legally, it is the state who decides. It's the state who decides whether something could incite violence. Now, is it a disproportionate power that we are handing the state? I think that's a conversation we've had over and over and over with multiple films. Yes, Kushal, please respond, and I'm coming to you, Avishkar.
3: No, but this is a very slippery slope, Padmaja. Same argument was given that Dhurandhar is propaganda, Kashmir Files is propaganda. Let Satluj be propaganda. Now respond to propaganda with your truth. Why are we not comfortable with this baseline in India? Why do we become Saste Stalins and Minnie Mouse everywhere? Why do we do this? Let propaganda flow, na. Aap usko counter karo. And I get it that, you know, it did not... Kangana Ranaut did not get that privilege, and I had stood up for Kangana Ranaut at that time also because at that time so-called Punjabi sentiments were hurt because of Kangana Ranaut. Now Kangana ke bhi movie ko aane dena tha. Hamare yahan problem kya hoti hai malum hai? Hum log ek hi cheez mein PhD karke baithe hain India mein. What aboutism and authoritarianism? Hum bas wahi karte rehte hain. O to denial nahi hoya si, sa denial nahi hoya si. Bas yahi karte rehte hain hum log. Why can't we just say, let these movies come out and let's respond with brutal facts? We have platforms now. OTTs will publish your movies also. If they will publish Satluj, they will publish another thing. The same arguments, Padmaja, were made against Dhurandhar. On your show only, you remember, Arfa was talking about the same argument ki ye to propaganda hai ji. Arre propaganda hai to hone do na. Kya farak padta hai? Aap propaganda ko correct karo. Maine do paragraph padhe hai sirf 1991 ke article ke. Aise main BCO pad sakta hun jo kar rahe the us samay terrorist Punjab mein. Aur ye koi, and Ramneek is right, it is a Punjabi problem. Isme sirf Sikhon ki problem nahi hai. Hindu, Sikh, Christian, atheist, jo bhi ho, Musalman. पंजाबियों ने सफर किया था उस समय हम लोग तो आज भी इंटरमैरिज होती है पंजाब में हिंदू और सिखों में अरे मेरे खुद की फैमिली में होती है तो दूर क्या जाना तो हमारे तो नॉर्मल है ये बट द पॉइंट इज व्हाई हु गेट्स टू डिसाइड प्रोपेगेंडा एंड व्हाई शुड द स्टेट हैव सो मच पावर ये क्या मतलब मेरे मापियो ऑलरेडी हैगे ने आई डोंट नीड वन मोर मापियो इन माय लाइफ विद द स्टेट टेलिंग मी ओए पुत्र तू ए कर ओए
0: सो हियर इज द थिंग कुशल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बिकॉज़ यू आर अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट एंड आई यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एग्री विद यू बट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट If I was the state, I would ask you, if tomorrow there was violence thanks to this film, if there was an anti-state sentiment fanned because of this film, if there was, you know, it sort of lit that fire again, who would be responsible? Who would you hold responsible? It's the state's responsibility to maintain law and order, to ensure any anti-India feelings are not fanned. And I can see Ravinderji also shaking his head, but I'm playing the devil's advocate here because tomorrow somebody can turn around and ask you that.
3: Then you know what? Tomorrow, if somebody chants a religious slogan and does some violent act, I am sure the state will want to ban the religious text, right? It's not gonna ban it. It's not gonna happen. The person doing the violent act is responsible. Nobody else is responsible. If the movie says, I repeat, I have not seen the movie. If the movie says, go physically harm X, Y, Z person, that portion can be clipped because it's a direct call to violence with clear and imminent danger. Two, if the movie says someone alive or somebody whose family member has been defamed, they can file a defamation suit. That is understandable. Other than that, propaganda, but I'm sorry, I'm an atheist. I think all religion is propaganda.
0: Okay. So, Avishkar Singhvi, there are two parts to this. One, of course, is about free speech and the other is about politics. Now, I'd ask you were also about that 95 phase. Now let me ask you about KPS Gill. You know, KPS Gill, very, very polarizing figure depicted in this movie, sort of in a villain role from whatever I have gleaned from people who have watched it. How is it that despite all of this, Congress is still in support of the film? Are you comfortable with the portrayal of the then police chief?
2: Vasudha, I am not here as a Congress spokesperson. I am just here as an advocate just to remind you But just to highlight that, I think all
0: Padmaja
2: of us...
0: Padmaja here, but yes, I think I threw you off with that question. It's yes. Padmaja, yes, go on.
2: No, that's okay, that's all right. But I think all of us panelists are on the same page, and it's all of us against you in this case. Hmm. So because you are playing the devil's advocate, but I'll just say, to answer your question, the judgment of K.A. Abbas clearly says that the standpoint or the threshold for free speech is not a heckler's veto. The person who may threaten violence, he is to be stopped. And the state's duty is to stop, is to control the law and order situation, not to ban the free content or to curtail liberty. That is what the standard of free speech is. And by the same yardstick, if you're talking about inaccuracy in depiction in the movie, then if the 127 cuts the movie has already gone through, it can go through a few more cuts and it can become more accurate. That's not a ground
0: but
2: to ban the
0: But they weren't willing
2: movie.
0: To execute the cuts, right? That is where the problem lay. That 127 cuts were recommended. The filmmakers bypassed it
4: as per
0: and released it on OTT
4: instead. Accurate to whose comfort?
2: No, that's not... according to me, it's very simple that you cannot throw the baby out of the bathwater, and you can preserve the content and have it released and let people be the judge of it. I think if there's inaccuracy of content, there have been hundreds of such examples. We had Bandit Queen release. Mm. There was so much controversy around Bandit Queen back in the day. We had movies. We have had very, very sensitive content release in this country. But it all depends on who is on the side of the movie and who is against it. Who is in control of the powers that be at the time. So I think that's the real question we must. And what kind of society are we looking at? Are we looking at a society that polices content, or are we looking at a free society that promotes the exchange of ideas?
0: Okay, let people be the judge of it. One of those very rare occasions where we have everyone on the same side of the argument. At the end of the day, in a democracy, free speech must be held above all. On that very cordial note, thank you very much, all gentlemen, for having joined me. Moving on to a story that has been dominating headlines for weeks now, and we've been, in fact, on that story right from the beginning on The Buck Stops Here. A month after Ram Temple donation theft controversy first erupted, the Temple Trust met in Ayodhya today for a key decision. The decision on the resignation of Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. And in the meeting that lasted 3 hours, the Trust did accept their resignations. Now, that part was widely expected. What wasn't expected is the way in which the Trust chose to publicly defend Champat Rai. Speaking to the media soon after, Treasurer of the Trust, Swami Govind Dev Giriji, he heaped praises on Champat Rai, saying that his resignation was accepted since there was no other option as per the rules, and that his conduct had set an example of maturity and magnanimity. Listen in.
5: मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूँ. माने चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ, और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया. उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था. तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है. इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं. इस बात को ध्यान में लीजिएगा. हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं. उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस. जब ये त्याग पत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये बात आपके हाथ में नहीं है. अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए. ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया. उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया.
0: Okay, so now we've got two senior journalists with us here to dissect what really happened. Harshvardhan Tripathi, senior journalist, joins us along with Ashutosh ji. Harshvardhan ji, ye kaisa cleanup hai? Aapne boli diya ki unki sari sevaye outstanding hai, bahut unhone badhiya kaam kiya hai. To phir chori kiske nigrani mein hui? Who was supervising everything that happened inside the Ram Mandir Trust? Kya sirf Tinnu Yadav pe hi sara thikra phutega?
6: Nahi, mujhe lagta hai ki Padmaja, ye sabse mahatvapurn sawal hai. Lekin aapne jo pucha, kya ये जो चोरी हुई, इससे पहले चंपत राय की जो भूमिका है, चंपत राय इस राम मंदिर आंदोलन से वर्षों से जुड़े रहे. 1990 के बाद, मुझे जहाँ तक ध्यान में, 91 से शायद हुआ, अयोध्या में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया, और इस राम मंदिर के बनने में उन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया. क्या उसको ट्रस्ट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद आता है कि क्या उनकी निगरानी में दिक्कत हुई? अगर उनकी निगरानी में मुश्किल नहीं हुई होती, और मैं बार बार कहता हूं, मैं उदाहरण भी देता हूं कि मनमोहन सिंह जी बेईमान नहीं थे, वो चोर नहीं थे, वो भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार में ढेर सारे मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे, कई मंत्री तो जेल भी गए, मनमोहन सिंह थोड़ी जेल भेजे गए थे, या जेल भेजे गए हों तो कोई मुझे उदाहरण बताए, लेकिन उनकी सरकार पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे, न्यासी होने के नाते, महासचिव होने के नाते, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं तो कहीं ना कहीं वो अहंकार चंपत जी में दिखने लगा था, कई लोगों का ये कहना था कि वो सब कुछ स्वयं, उनको लगता था कि हम कर देंगे, शायद वही अहंकार रहा होगा कि वो चले गए रिकवर कराने के लिए, उनकी मंशा अगर खराब रही होती तो पुलिस को लेकर पैसे क्यों रिकवर कराते, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जांच होने दीजिए, अगर उनकी भूमिका निकलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए।
0: ओके, अगर भूमिका निकलती है आशुतोष जी तब कार्रवाई होनी चाहिए, फॉर नाउ एक्शन इज सफिशिएंट।
7: देखिए पद्मजा, ट्रस्ट ने तो पहले उनको क्लीन चिट दे दी है, इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि अब किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी जो उनसे ठीक से पूछताछ करेगा या उनकी भूमिका की जांच करेगा। तो जो आज ट्रस्ट ने एक काम तो ठीक किया, कम से कम उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से तारीफ की गई है,
0: नहीं और स्वीकार तो इसलिए किया है बिकॉज़ दे सेड दे हैड नो ऑप्शन, दे सेड दैट द मैंडेट बिफोर अस इज दैट बिकॉज़ चंपत राय हैज रिजाइंड वी हैड टू एक्सेप्ट, which almost makes one think that if they had the option they perhaps would have rejected it also.
7: No.
0: So it's almost like Champat Rai magnanimously offered to resign.
7: नहीं, मैं देखिए उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक विकल्प ये होता है कि आप इस्तीफा दे देते हैं, ट्रस्ट का ये प्रेरोगेटिव है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार करें, इस्तीफे को स्वीकार ना करें। ट्रस्ट तो बड़े आराम से इस्तीफे का स्वीकार कर सकता था, क्या कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ कि आप कोई आदमी अगर इस्तीफा देगा तो हटाने को लेके क्लॉज है कि जो ट्रस्ट में 10-14 लोग हैं, 14 में से 3 लोग ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त है, एक आदमी की मृत्यु हो गई तो 10 में से 2 अनिल मिश्रा और चंपत राय, तो बचे 8 लोग, 2/3 बहुमत से आप किसी को भी असैक कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, ये तो ट्रस्ट का नियम है। अब उसमें चूंकि इस्तीफा दे दिया इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये नाइदर हियर नॉर देयर, ये तो सीधे सीधे खुलेआम लीपापोती है। आज की तारीख का कोई मुझे बता दे कि क्या 2G के मामले में कोई किसी की भूमिका साबित हुई, लेकिन वो लोग जेल गए ना, ये राजा जेल गया, उनके मंत्रालय गया, क्या आज तक सुरेश कलमाड़ी की भूमिका स्पष्ट हुई? क्या नहीं स्पष्ट हुई? तो बिना जांच किए आपने अभी से क्लीन चिट दे दी,
6: देखिए अच्छा हुआ मैंने तो पहले ही कहा, क्या मनमोहन सिंह जी जेल गए थे क्या नहीं गए? अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि जो जेल गए उनकी किसकी की, तो जांच तो होने दीजिए ना भाई, आप दोनों बातें कैसे? और एक मैं फैक्ट बता दूं, जिसकी तरफ पता नहीं क्यों हम में से किसी ने वो चिट्ठी ध्यान से नहीं पढ़ी, 3 पन्ने की जो चिट्ठी है, और जो गोविंद देव गिरी जी ने कहा है उसमें उन्होंने गोपाल नगर कोटे नाम लिखा, क्योंकि टीवी पर गोपाल राव चल रहा था तो कोई समझ ही नहीं पाया, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल नगर कोटे को भी न्यास ने हटा दिया, उन्होंने तो त्यागपत्र नहीं दिया था, लेकिन उनके ऊपर भी सवाल चूंकि खड़े हो रहे थे इसलिए उनको भी हटाया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि चंपत राय जी की गलती है ही, मैं तो पहले दिन से उनका त्यागपत्र मांगने वाला हूं, लेकिन न्यास ने अभी जो किया वो कानून के दायरे में किया, अब अगर जांच में उनकी भूमिका सामने आती है तो कानून काम करे, उसमें न्यास की भूमिका क्या होगी?
0: लेट्स बी ऑनेस्ट, लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ गोविंद देव गिरी जी, इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ही वाज डूइंग द बेरेस्ट मिनिमम, उनका बस चलता तो शायद वो इस्तीफा भी नहीं लेते, वो तो उनको मजबूरी में लेना पड़ गया। उन्होंने क्या क्या बोला है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको हम आभार प्रकट किया, हमने उन्हें बोला कि भाई आपने एग्जाम्पल सेट किया है, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बीइंग डन एज अ फेवर, दिस इज समथिंग देयर शुड हैव बीन एलिमेंट ऑफ रेप्रिमांडिंग हिम रादर देन सेइंग कि आपने इस्तीफा दे दिया बहुत धन्यवाद।
6: देखिए पंडिया जी, हम लोग पत्रकार हैं और हम लोगों की भाषा बड़ी तीखी होती है, ये संत हैं, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनकी भाषा तो आपस में एक दूसरे के लिए कैसे होगी? और मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने जिस न्यास में काम किया उनके उस काम में एक दूसरे के प्रति जिस तरह का रहा होगा आदर रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर आरोप हैं, न्यास की जिम्मेदारी थी उनको बाहर निकालता। और मैं पहले भी कह चुका हूं, देर हुई, त्यागपत्र और पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र लिया गया, कार्रवाई अब होगी। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या कोई अभी तक कोई ऐसा प्रमाण आया जिसमें कहा गया कि नहीं चंपत राय कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे थे, वो बैठे हुए थे कहते थे अच्छा चलो तुम इतने लाख ले आओ, मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये कुछ लोग जिनके मन में लोभ लालच आया वो ये काम कर रहे थे, जिसकी निगरानी का जिम्मा श्रीमान चंपत राय के ऊपर था और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, उनको पहले ही त्यागपत्र देना था, देर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर कदम।
0: डोंट गेट कॉट अप इन द लैंग्वेज आशुतोष।
7: देखिए पद्मजा, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दूं कि मैं दो दिन से बहुत हैरान हूं। मैं हर्षवर्धन जी हमारे मित्र हैं, हमारी बात का बुरा ना माने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।
0: कुछ बहुत कोई कहने वाले हैं, जब भी कोई कहता है ना बुरा मत मानिए, बहुत सम्मान करता हूं।
7: हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन हर्षवर्धन मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरीके से, इसलिए मैं तीखे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। और वैसे भी अलग देखिए, मैं पे जाता हूं, कोई कहता है चंपत राय की तुलना महात्मा गांधी से कर रहा, कल एक पूर्व सांसद मुद्दे जो आरएसएस जुड़े हैं वो लोकमान्य तिलक से कर रहे, कोई मनमोहन सिंह से कर रहा, अभी इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात कर दी। मनमोहन सिंह जी का दूर दूर तक करप्शन से कोई लेना देना नहीं था। हाँ ये बात अलग है, ही प्रेसाइडेड अ गवर्नमेंट विच वाज फुल्ली जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। मैंने कहा साबित तो कुछ नहीं हुआ उसमें। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं है, इसको पूरे मामले को चढ़ावा चोरी में कन्वर्ट किया जा रहा। वहां रिक्रूटमेंट को लेकर जो बहुत बहुत बड़ा स्कैम था वहां पे, ये तो एसआईटी की रिपोर्ट में सारी बातें सामने आ रही हैं। वहां जमीन के लेन देन का मसला चल रहा था कि 2 करोड़ की जमीन को आपने 18.5 करोड़ में बेच दिया। वहां पे जो स्पेशल दर्शन हो रहे थे उसमें घुस खाई जा रही थी। क्या ये रिक्रूटमेंट का काम, ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए, क्या ये लोग जिम्मेदार थे? रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, किसके कहने पर रिक्रूटमेंट हो रहा था? जो जिस एजेंसी को हायर किया गया, सिक्योरिटी की एजेंसी को हायर किया गया, क्या उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में कौन बात करेगा? तो सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं, मैं मान सकता हूं चढ़ावा चोरी में चोरी हुई, मान लिया मैंने। लेकिन जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने कहा चोरी हो रही, चंपत जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ऑडिट कम ऑडिट ने एजेंसी ने कहा कि इसमें एसओपी
0: बनाया, दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड। हर्षवर्धन जी सेइंग दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड।
7: लेट मी टेल यू। फिर उसके बाद जमीन घोटाले का प्रश्न आया, एसआईटी गठित हुई, एसआईटी की रिपोर्ट कहां है किसी को नहीं मालूम, नोबडी नोस अनटिल दिस डेट, किसी को नहीं मालूम कि चंपत राय का इस्तीफा है कहां, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया भी है या नहीं दिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से राम मंदिर के मामले में, चाहे रिक्रूटमेंट का सवाल हो, चाहे जमीन का प्रश्न हो, चाहे चाहे स्पेशल दर्शन का प्रश्न हो, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा
0: था। ऑर्गेनाइज्ड बाय हु? आर यू सेइंग दैट चंपत राय ऑर्गेनाइज्ड इट? आर यू सेइंग दैट?
7: बिना नहीं, मैं नाम नहीं, मैं कह रहा हूं बिना बड़े लोगों की मिली भगत से ये संभव ही नहीं था। रिक्रूटमेंट का काम टिन्नू यादव नहीं देख सकता, रिक्रूटमेंट का काम वो जो श्रीवास्तव वो नहीं देख सकता, जो बैंक एम्प्लॉई है, उन्होंने गणना में चोरी की होगी, मैं मान सकता हूं उसको। रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, स्पेशल दर्शन के लिए पैसे कौन खा रहा था, जमीन का घोटाला कौन कर रहा था?
6: पद्मजा जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी अगर कुछ हमें कह भी देंगे तो मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो छोटा भाई कह रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तथ्य पर हम बात करेंगे, तीखे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बिना संकोच के एक बात कह दूं कि आशुतोष जी ने सिर्फ खबरों को पढ़ लिया, जानकारी नहीं ली। जैसे किसी ने कह दिया कि चंपत राय 400 गार्ड के साथ चलते थे। अब चूंकि मैं तो शिलान्यास के पहले, शिलान्यास के समय 1 हफ्ते, प्राण प्रतिष्ठा के समय 1 हफ्ते और दर्शन लगातार मैं करता रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो एजेंसी कौन सी है। भाई चंपत राय जी ने कोई ऐसी एजेंसी नहीं रखी है, वो एजेंसी अलग अलग संस्थानों में काम करती है, ऐसी एक एजेंसी वहां भी है। बाकायदा जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जरिए है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं करती, पहले तो ये जानना चाहिए। नंबर एक, वो जो 400 वाला आंकड़ा है ये आशुतोष जी को मैं कहूंगा एक बार चेक करें अपने कुछ वहां के मित्रों से। दूसरा, जैसे काक भुसुंडी जी गायब हो गए, रामचरित मानस गायब हो गई, हार गायब हो गया है, सिल्ली गायब हो गई, ईंटें गायब हो गई, इस तरह का अतिरेक फैलाया गया। तीसरा, मैं देश के हर मंदिर में, चाहे वो सरकारी प्रबंधन में हो चाहे निजी प्रबंधन में, लगभग दर्शन कर चुका हूं। बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा इतनी शानदार दर्शन की व्यवस्था शायद कहीं मिले, और ये जो कह रहा है वो विशुद्ध झूठ बोल रहा है। वहां स्पेशल दर्शन का अलग से कोई पैसा नहीं लगता है, जहां लाइन में लग के स्मूथ व्यवस्था है कि आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, वहां कौन आदमी है इतना जो 25,000 रुपये स्पेशल दर्शन का दे? किसी ने कह दिया उसको लेके चले गए, कौवा कान ले गया, पता नहीं चला। चढ़ावा चोरी में गड़बड़ हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 8 लोग हैं, मैं कह रहा हूं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? हम और आशुतोष जी टीवी पर आपके साथ डिबेट करेंगे, इससे पता चलेगा? ये तो जांच से ही पता चलेगा ना।
0: और लोग कौन है? वही तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड टुडे, व्हिच पुलिस पर्सन विल हैव द गट्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ चंपत राय?
6: पद्मजा जी, चंपत राय से 8 घंटे
0: चंपत राय जी को बोली दिया है कि आपके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब कौन पुलिस वाला जाकर के कहेगा कि भाई चंपत जी को मिली भगत हो सकती
6: है? चंपत राय जी से और अनिल मिश्रा से 8 घंटे की पूछताछ हुई है, और ये हम ही लोगों ने चलाया, बाकायदा एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ करके आई, और जो पूछताछ करके आई वही रिपोर्ट में है। अब जो रिपोर्ट का एक्सटेंशन किया गया, क्यों किया गया? पहले तो रिपोर्ट आ जानी थी ना, क्यों उसको समय बढ़ाया?
0: अगर उनसे
6: क्योंकि उसको और जांच करनी
0: की गई है तो यानी कि वो भी शक के घेरे में,
6: निश्चित तौर पर
0: अगर वो शक के घेरे में है तो उनके लिए इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है?
6: नहीं देखिए पंजाबी में फिर कह रहा हूं, हम आप वही भाषा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गोविंद देवगिरी जी क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे अपने सहयोगी के लिए या चंपत राय जी के लिए, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं?
0: सर पर अभी तो कुछ टिन्नू यादव के खिलाफ भी
6: उन्होंने क्या
0: तो कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं किया कि आपने अरेस्ट हो करके बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया।
6: दोनों बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है पंजाबी जी। टिन्नू यादव एक ऐसा कर्मचारी जो वहां जाता है और जिसने विश्वासघात किया है, या लवकुश मिश्रा या वो क्या नाम है श्रीवास्तव,
0: आशुतोष तो कह रहे हैं कि किसी और की मिली भगत के साथ विश्वास,
6: तो किसी और को खोज
0: के लिए थोड़ा विश्वास,
6: ये आशुतोष जी को या हमें कैसे पता लगेगा?
0: सर टिन्नू यादव को वॉकी टॉकी किसने दिलाया? क्या किसी की हिम्मत है कि एक ऐसे ही आदमी को, कोई रैंडम आदमी को वो अपना पुलिस का वॉकी टॉकी दे दे?
6: रैंडम आदमी नहीं है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, दो चीजें हैं, क्या वो उसमें शामिल थे या उनका इग्नोरेंस था, और इग्नोरेंस था तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस था या क्या था, ये कैसे तय होगा? ये जांच से तय होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चंपत राय जी को सिर्फ इसलिए निशाना लगाना कि एक आदमी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, एक आदमी राम मंदिर के पूरे निर्माण में जुड़ा रहा, वो संघ का प्रचारक रहा, इसलिए आप निशाना लगाकर कहीं और साधना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और वो मतलब अपनी तरफ से अगर भरोसा दे रहे हैं तो या तो आप ये कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं, तो क्या ईडी सीबीआई की जांच कराएंगे? तो वो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आती है, तो कहां जाके जांच रुकेगी ये भी बताना
0: चाहिए। लास्ट वन मिनट आशुतोष।
7: देखिए अब विनय कटियार को तो मैं नहीं बोलूंगा कि संघ विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है या हिंदू विरोधी है, या मैं नृपेंद्र मिश्र को तो नहीं बोलूंगा भाई, विनय कटियार तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का, सरोज जो है दूसरे दुबे जी वो तो खुलेआम नाम ले रहे हैं, जो जो संघ से जुड़े हुए लोग वही नाम ले रहे हैं, और कुछ हमारे पत्रकार मित्र में जानबूझ के उनका नाम ले रहे, तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने इस बारे में जानकारी दी, क्यों नहीं चंपत राय ने कार्रवाई की उसके खिलाफ? उसके बाद जब जमीन घोटाले का प्रश्न आया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? भाई 12-2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची जा रही, ट्रस्ट को ही बेची जाए 10 मिनट के अंदर, क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने? और एक ड्राइवर खुलेआम उसकी उसकी उसकी वो अंदर बाहर हो रहा है और काउंटिंग के अंदर अंदर बाहर जा रहा, मतलब ये मैं तो कहता हूं कि अगर अभी तक कोई दूसरी सरकार होती तो चंपत राय को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, जेल चले गए होते वो। लेकिन चूंकि यहां पर चंपत राय जी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं चंपत राय से कभी नहीं मिला हूं, राम मंदिर के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन जो ये लालच है ये कब मनुष्य का दिमाग बदल देती किसी को नहीं मालूम।
0: ओके, यू आर आस्किंग फॉर एक्शन, एक्शन हैज बीन टेकन, वेदर इट्स सैटिस्फैक्टरी और सफिशिएंट और नॉट आई विल लीव इट टू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम बट आई सस्पेक्ट दिस इज अ डिबेट दैट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
9: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
8: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसो हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
11: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
10: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
14: NDTV tops the Reuters Institute. India reach rankings again. Number one in offline and online news reach. For the sixth year in a row, audiences continue to choose NDTV across television and digital. NDTV, trusted across every screen.
15: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। सो वेयर आर यू।
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
4: 1933। सरसो
17: से सरसो। आयुष, सिंस व्हेन डू वी डू स्क्रिप्ट्स?

0: nature of greed. There was Twisha, now it's Akriti. And there are statistics now, like the 15 others that died the same day and for the same reason that they did. Here are some big questions that I need to ask tonight, because the death of Akriti Sutar is not just any other death. Akriti had informed her mother that she had left from office to home on Saturday, the evening that she actually died. The same day she had hosted a party for her colleagues in the office to celebrate her wedding, which had taken place 2 months before. Soon after, Akriti's phone was switched off after she spoke to her mother. Her husband, Arastu Sikka, accused Akriti's family of hiding her during their marital time. Akriti was found lying on the ground, lifeless, in Lodhi Colony after apparently falling from the third floor. Her family say she was pushed. She was rushed to the Ames Trauma Center, where she was pronounced dead. Injuries were found on Akriti's left arm and thigh. The family has completely rejected the suicide claim, and they have accused the husband of murder. So the big questions I am asking tonight are, why no bloodstains where Akriti's body was apparently found? This has been documented. Why would Akriti die by suicide if she threw a party just hours before that in her office to celebrate her wedding? What explains the injury marks on Akriti's body? Akriti spoke to her mother just 2.5 hours before the death. What happened in those final hours? These are questions that will be a matter of investigation, because, like I said, Akriti Sikka died on Saturday, just 2 days ago. I'm joined now by Amay Sutar, who is Akriti's brother. And he joins me live now from the national capital. Amay, ye ek bahut mushkil daur hai aapke liye aur aapke parivar ke liye. To pehle main aapko mere ye bahut dukhad घटना है और मैं अपने कंडोलेंसेस कन्वे करता हूं आपको और आपके परिवार को. मेरा पहला सवाल है हमें कि सैटरडे को क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या आप बता सकते हैं? आकृति ऑफिस गई थी उस दिन, कुछ सेलिब्रेशन भी था उसके ऑफिस में, उसके बाद माँ से बात हुई थी. क्या आप बता सकते हैं डिटेल में क्या हुआ था उस दिन?
1: एक्चुअली सर, उस दिन जो मॉर्निंग में मेरी सिस्टर जो है वो ऑफिस के लिए निकली थी. मेरी सिस्टर को एक्चुअली ऑफिस 3 मंथ बाद उसने अपने ऑफिस को कंटिन्यू किया था. तो जब फर्स्ट डे वो 1 तारीख को ऑफिस गई थी, तो उसने पार्टी देने की सोची थी ऑफिस में. तो उसने बोल भी रखा था कि मैं आप सबको पार्टी दूँगी अपने मैरिज की. तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ऑफिस, हाँ एक्चुअली वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ऑफिस निकली, तो उसने मेरी मदर को फ़ोन करके बोला कि मेरी मम्मी को कि मैं ऑफ़िस के लिए निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ, मतलब ऑफ़िस के लिए, ऐसे बोला उसने. फिर फ़ोन कट किया. फिर इवनिंग में उसने पार्टी दी. बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी अपने कलीग्स को अगर कोई भी वादा कर चुका है कि मैं पार्टी दूँगा या कुछ भी है, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो पहले से, तो वो फिर भी अंदर, मतलब अपने घरेलू दिक्कत या फिर अपने अंदर की चीज़ें की कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. जैसे मैं भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता. तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम क्यों करती? और मेरी सिस्टर ने अगर वहाँ पार्टी दी, इसका मीन ये नहीं बनता ना कि वो खुश थी या फिर उसका उसकी मेंटली कोई प्रेशर नहीं था. ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब अपना अपना प्रेशर अंदर रखते हैं, कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. और रही बात मेरी जो सिस्टर है, उस दिन उसने पार्टी दी और इवनिंग में जब वो ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:18 पे उसने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि मम्मी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मैं अभी फ़िलहाल निकल के बैठ गई हूँ, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, मीन अपने ससुराल जा रही हूँ. बट उसके ही आधे एक घंटे बाद करीबन हमारे पास कॉल आया आपकी बेटी कॉल नहीं उठा रही. उसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में था, तो बोला कि आकृति मतलब कि बेटा कॉल करो, आपकी मतलब बहन जो है कॉल नहीं उठा रही है, उसको कॉल करो उनको. मैंने बोला ओके, मैं कॉल करता हूँ. तो मैंने कॉल किया तो तब भी कॉल नहीं लग रहा था उसका। हमने फिर उसको करीबन एक घंटे तक करीबन ट्राई किया, फिर मैं घर गया, फिर घर जाके उसके ऑफिस वगैरह के पेपर वगैरह निकाले, सब जगह

0: ट्राई किया, सब जगह सर्च किया, उसके ऑफिस में भी, बाहर भी, हमारे सारे फ्रेंड्स जो थे हम सर्चिंग में लग गए। तो करीबन 10 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के बीच में हमने एक लास्ट कॉल ट्राई करी, आखिरी, मतलब मेरे सिस्टर के फ़ोन पे मेरे फ्रेंड ने। जब लास्ट कॉल उन्होंने ट्राई करी तो तब पता चला कि ये जो कॉल है वो पिक करी गई थी लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। और जब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कॉल पिक करी गई तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप जो है लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाइए। हम लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुँचे तो उनने हमें ये बताया कि आपकी जो सिस्टर है उनने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और बाकी कोई भी इसके अलावा कोई भी हमारे पास खबर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके करीबन 1 घंटे तक हमको कुछ नहीं बताया गया। 1 घंटे बाद जब उनके जो हस्बैंड थे अरस्तु, वो जब पहुँचे, उनसे जब पहुँचने के बाद कुछ पूछताछ उनने करी रूम में बिठा के, पूछताछ करने के कुछ देर बाद हमको बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उसके बाद हमें जब बताया गया तो तब मतलब हम कुछ सोचने की हालत में नहीं थे, कि कुछ कहने की हालत में थे, तब हम कुछ नहीं कर सके।
1: आपका कहना है हमें कि ये सुइसाइड नहीं था, ये मर्डर था, आपका परिवार ये कह रहा है, ऐसा क्यों है? और पिछले 2-3 महीने में ऐसा कुछ सामने आया था कि कुछ डाउरी को लेकर कुछ हैरेसमेंट था, कुछ मांगे थी इस परिवार का?
0: देखो सर, मैं क्लेरिफाई करता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो मेरी सिस्टर थी वो पहली बात तो इतनी मेंटली स्ट्रांग थी कि वो कभी भी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि चलो अगर पहले भी ना हो, बट लाइफ के साथ साथ इंसान की अंदर के मेंटलिटी से लेके स्ट्रांगनेस सब चेंज होती है। क्योंकि मेरी सिस्टर और मैंने 7 ईयर से अपना घर संभाला था जब हमारे पापा यहाँ से चले गए थे, इस दुनिया से एक्सपायर हो गए थे। हमने सब चीज़ें हैंडल करी थी साथ में मिल के, तो इतने हम मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे कि हम ये सब उल्टी सीधी कदम नहीं उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो सिस्टर है उसको 2.5 महीने से उनके जो ससुराल वाले हैं वो हरदम ये उनको ब्लेम किया करते थे, उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की जो सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड की जो सिस्टर है वो, कि आप अपने घर से, तो अपने घर से कुछ भी लेके नहीं, सामान हमारे सामान को ऐसे बोल रही है, मतलब आप तो अपने घर से कुछ लाए नहीं हो तो हमारे सामान को ब्लेम मत करो, कि हमारे सामान को हाथ मत लगाओ और अपने घर से लेके आओ कुछ ना कुछ। और शादी से पहले ये सारे मतलब कि अपने आप को क्लीन चिट दे रहे थे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं और हम किसी भी चीज़ के, मतलब कोई भी हम आपसे उम्मीद नहीं रखते हैं। और उसके बाद ये सब चीज़ की डिमांड करने लग गए एक तरीके से, कि हमको पैसे भी चाहिए, हमको सामान भी चाहिए, सब चीज़।
1: लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी आकृति के साथ हमें, और आकृति का मेंटल कंडीशन क्या था, उन्होंने क्या बोला आपको?
0: एक्चुअल में मेरी जो सिस्टर के ऊपर हाथ उठाया जा रहा था वो जो है वो मेरे को नहीं बताया गया था। मेरे को इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि जो मेरी, मतलब मेरी जो मम्मी थी, मेरी मदर जो थी, उनको ये सब चीज़ जो है मेरी सिस्टर ने एक बार बीच में बताया था। तो मेरी मदर ने उनको, उनके हस्बैंड वगैरह सबको समझाया था बेटा कि ऐसे कुछ नहीं होता ये वो। फिर जब ये 2-3 बार उसके बाद अभी हाथ उठाया गया तो उसने मेरी मम्मी को, मतलब मेरी मदर को कुछ नहीं बताया। तो मेरी मदर ने मेरे को कुछ दिन बाद, मतलब अभी 3 तारीख को जब मैं घर पे आया, तो हम अभी 6 तारीख को यहाँ से गांव के लिए निकलने वाले थे, हम अपने विलेज जा रहे थे कुछ काम से, तो उनने बोला कि आप जो हैं, मतलब मेरी मम्मी मेरे से बोल रही हैं कि आप एक काम करो दीपू, हम तो गाँव चले जाएँगे, तो मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, ये किसी को मत बताना। और उनने ये सब बताया मेरी मम्मी को कि मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि जैसे कि आपकी जो सिस्टर है उसको ऊपर हाथ उठाता है, उसका पति ऐसे करता है वैसे करता है, तो दीपू जब चल के एक बार बात करते हैं, 6 तारीख को हम जब गांव जाएंगे उससे पहले उनके घर में, तो ऐसा वैसा कुछ होना नहीं चाहिए और मैं तेरे को बताया नहीं क्योंकि तू टेंशन लेगा, इसलिए ऐसे करके मेरी मम्मी ने मेरे को जब बताया तो उस टाइम मैं बहुत प्रेशराइज हो गया, दिमाग से मेरे को बहुत गुस्सा सा आने लगा। तो मैंने बोला एक काम करो, इतना लेट करके, आप तो वैसे ही लेट कर चुके हो, तो अभी कॉल लगाओ।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से
5: देश का टायर, जेके टायर।
6: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
9: सबका राजा आर्थर मसाला।
10: We are over, Jimmy.
11: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: उसे दंड नहीं मिलता तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार, त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
1: जब तक नायक महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
2: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
3: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
4: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened just 2 days after its release. Now, as per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say that the concerns were raised over certain portions of the film. Diljit Dosanjh has now broken silence, since he is the main protagonist of the movie, on the ban, with a cryptic social media post saying, and I quote, "I challenge the darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Meanwhile, what's also happened is that advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs, alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism. Here is what Diljit Dosanjh has to say on the full controversy.
5: Shukrawar nu hi pata si ve shayad edda ho sakdi hai, jehdi gal mere already dimag si. तो कोई शौक वाली गल नहीं, जेड़ा लगता ही सी भी यस, मैनू लगता सी भी मंडे जब दफ्तर दफ्तर खुलणगे उदो शायद जेड़ी आ फिल्म बैन की जाऊगी, पर संडे शाम नू ही हो जूगी इहदा कोई आइडिया नहीं सी। पर इन्ना क मैनू सीगा, इस करके मैं शायद ये गल कल कर भी दित्ती सी, डे वन तो ही सीगा, इसे करके फिल्म की प्रमोशन भी नहीं कर सके, इसे करके बिना दसे किसी नू फिल्म नू रिलीज़ किया। जे दस के रिलीज़ करते 2 दिन पहला प्रमोट करते फिर तो फिर नहीं सी लगनी, पर हुण मैनूं इस गल की तसली है कि फिल्म जिहड़ी घर घर पहुँच चुकी है, तुहाडे कोल आ फिल्म, लोगों ने फिल्म डाउनलोड भी कर ली है, तो अज जिहड़े हुण नवा यूथ आ वह फिल्म की गल भी कर रहा है।
4: And even as the controversy surrounding Satluj continues, the film has found an unexpected audience in

0: teams deployed in Maharashtra. Red alert has been issued for Pune, Raigad, Nashik and Palghar for tomorrow. Rape and murder of 11-year-old girl in West Bengal's Barupur triggers political tension. Three arrested by cops. Chief Minister says justice will be delivered. Prime Minister Narendra Modi begins his three-nation tour with Indonesia, set to hold talks with the President of Indonesia on the defence, trade and investment. Next stop is New Zealand and Australia. And we are starting this edition with a top political story that's coming in from the state of Uttar Pradesh. The fallout from the alleged Ram Temple donation theft has triggered major developments within the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust today. At a crucial meeting that was held late in the afternoon today, it was chaired by Mahant Nitya Gopal Das. The trust expressed regret over the episode and accepted the resignation of General Secretary Champat Rai. Now, the meeting also discussed Anil Mishra's resignation, who is also one of the trustee who has now resigned. His resignation has been accepted, with saints and seers saying that the incident has raised serious questions of faith. The treasurer, Swami Govind Dev Giri, has acknowledged that a grave error had been occurred and that certain lapses had gone unnoticed. We are getting in a lot of reactions on that political development that took place today. Let's take a look at some of them.
1: हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार, त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
2: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
3: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
4: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
0: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened just 2 days after its release. Now, as per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say that the concerns were raised over certain portions of the film. Diljit Dosanjh has now broken silence, since he is the main protagonist of the movie, on the ban, with a cryptic social media post saying, and I quote, "I challenge the darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Meanwhile, what's also happened is that advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs, alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism. Here is what Diljit Dosanjh has to say on the full controversy.
5: Shukrawar nu hi pata si ve shayad edda ho sakdi hai jehdi gal mere already dimag si. तो कोई शौक वाली गल नहीं, जेड़ा लगता ही सी भी यस, मैनू लगता सी भी मंडे जो दफ्तर दफ्तर खुलणगे उदों शायद जिहड़ी आ फिल्म बैन की जाऊगी, पर संडे शाम नू ही होजूगी इहदा कोई आइडिया नहीं सी। पर इन्ना क मैनू सीगा, इस करके मैं शायद ये गल कल कह कर भी दित्ती सी, डे वन तो ही सीगा, इसे करके फिल्म की प्रमोशन भी नहीं कर सके, इसे करके बिना दसे किसी नू फिल्म नू रिलीज़ किया। जे दस के रिलीज़ करते दो दिन पहला प्रमोट करते फिर तो फिर नहीं सी लगनी, पर हुण मैनूं इस गल की तसली है कि फिल्म जिहड़ी घर घर पहुँच चुकी है, तुहाडे कोल आ फिल्म, लोगों ने फिल्म डाउनलोड भी कर ली है, तो अज जिहड़े हुण नवां यूथ आ वह फिल्म की गल भी कर रहा है।
0: And even as the controversy surrounding Satluj continues, the film has found an unexpected audience in rural Rajasthan. Watch this visual where Anupgarh district, an entire village, came together for a community screening on a giant screen, with locals saying that the film's message on justice and human rights should reach more people. The event has now gone viral after actor Diljit Dosanjh shared pictures and videos from the screening on social media, reigniting the debate over the film and the calls to ban the lift.

0: अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस, जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है, अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपता जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया।
1: ओके, सो नाउ वी हैव गॉट टू सीनियर जर्नलिस्ट विद अस हियर टू डाइसेक्ट व्हाट रियली हैपेंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट जॉइंस अस अलोंग विद आशुतोष जी। हर्षवर्धन जी, ये कैसा क्लीन अप है जब आपने बोल ही दिया कि उनकी सारी सेवाएं आउटस्टैंडिंग है, बहुत उन्होंने बढ़िया काम किया है, तो फिर चोरी किसके निगरानी में हुई? Who was supervising everything that happened inside the Ram Mandir Trust? क्या सिर्फ टिन्नू यादव पे ही सारा ठीकरा फूटेगा?
2: नहीं नहीं, मुझे लगता है कि पंजा ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन आपने जो पूछा क्या ये जो चोरी हुई इससे पहले चंपत राय की जो भूमिका है, चंपत राय इस राम मंदिर आंदोलन से वर्षों से जुड़े रहे, 1990 के बाद मुझे जहाँ तक ध्यान में 91 से शायद हुआ अयोध्या में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और इस राम मंदिर के बनने में उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, क्या उसको ट्रस्ट को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद आता है कि क्या उनकी निगरानी में दिक्कत हुई? अगर उनकी निगरानी में मुश्किल नहीं हुई होती, और मैं बार बार कहता हूं, मैं उदाहरण भी देता हूं कि मनमोहन सिंह जी बेईमान नहीं थे, वो चोर नहीं थे, वो भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार में ढेर सारे मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे, कई मंत्री तो जेल भी गए, मनमोहन सिंह थोड़ी जेल भेजे गए थे, या जेल भेजे गए हों तो कोई मुझे उदाहरण बताए, लेकिन उनकी सरकार पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे, न्यासी होने के नाते, महासचिव होने के नाते, और बिना किसी संकोच के मैं कहूं तो कहीं ना कहीं वो अहंकार चंपत जी में दिखने लगा था। कई लोगों का ये कहना था कि वो सब कुछ स्वयं, उनको लगता था कि हम कर देंगे, शायद वही अहंकार रहा होगा कि वो चले गए रिकवर कराने के लिए। उनकी मंशा अगर खराब रही होती तो पुलिस को लेकर पैसे क्यों रिकवर कराते? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जांच होने दीजिए, अगर उनकी भूमिका निकलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराइए।
1: ओके, अगर भूमिका निकलती है आशुतोष जी तब कार्रवाई होनी चाहिए, फॉर नाउ एक्शन इज सफिशिएंट।
3: देखिए पद्मजा, ट्रस्ट ने तो पहले उनको क्लीन चिट दे दी है, इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि अब किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी जो उनसे ठीक से पूछताछ करेगा या उनकी भूमिका की जांच करेगा। तो जो आज ट्रस्ट ने एक काम तो ठीक किया, कम से कम उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से तारीफ की गई है,
1: नहीं और स्वीकार तो इसलिए किया है बिकॉज दे सेड दे हैड नो ऑप्शन, दे सेड दैट द मैंडेट बिफोर अस इज दैट बिकॉज चंपत राय हैज रिजाइंड वी हैड टू एक्सेप्ट, which almost makes one think that if they had the option they perhaps would have rejected it also.
3: No,
1: so it's almost like Champat Rai magnanimously offered to resign.
3: नहीं, मैं देखिए उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक विकल्प ये होता है कि आप इस्तीफा दे देते हैं, ट्रस्ट का ये प्रेरोगेटिव है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार करें, इस्तीफे को स्वीकार ना करें। ट्रस्ट तो बड़े आराम से इस्तीफे को स्वीकार कर सकता था, क्या कोई क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ कि आप कोई आदमी अगर इस्तीफा देगा तो हटाने को लेके क्लॉज है कि जो ट्रस्ट में 10-14 लोग हैं, 14 में से 3 लोग ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त है, एक आदमी की मृत्यु हो गई तो 10 में से 2 अनिल मिश्रा और चंपत राय, तो बचे 8 लोग, 2/3 बहुमत से आप किसी को भी असैक कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं, ये तो ट्रस्ट का नियम है। अब उसमें चूंकि इस्तीफा दे दिया इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं, मतलब ये नाइदर हियर नॉट देयर, ये तो सीधे सीधे खुलेआम लीपापोती है। आज की तारीख का कोई मुझे बता दे कि क्या 2G के मामले में कोई किसी की भूमिका साबित हुई? लेकिन वो लोग जेल गए ना, ये राजा जेल गया, उनके मंत्रालय गया, क्या आज तक सुरेश कलमाड़ी की भूमिका स्पष्ट हुई? क्या नहीं स्पष्ट हुई? तो बिना जांच किए आपने अभी से क्लीन चिट दे दी,
2: नहीं देखिए अच्छा हुआ मैंने तो पहले ही कहा, क्या मनमोहन सिंह जी जेल गए थे क्या नहीं गए? अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि जो जेल गए उनकी किसकी की, तो जांच तो होने दीजिए ना भाई, आप दोनों बातें कैसे? और एक मैं फैक्ट बता दूं, जिसकी तरफ पता नहीं क्यों हम में से किसी ने वो चिट्ठी ध्यान से नहीं पढ़ी, 3 पन्ने की जो चिट्ठी और जो गोविंद देव गिरी जी ने कहा है, उसमें उन्होंने गोपाल नगर कोटे नाम लिखा, क्योंकि टीवी पर गोपाल राव चल रहा था तो कोई समझ ही नहीं पाया, विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल नगर कोटे को भी न्यास ने हटा दिया, उन्होंने तो त्यागपत्र नहीं दिया था, लेकिन उनके ऊपर भी सवाल चूंकि खड़े हो रहे थे इसलिए उनको भी हटाया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि चंपत राय जी की गलती है ही, मैं तो पहले दिन से उनका त्याग पत्र मांगने वाला हूं, लेकिन न्यास ने अभी जो किया वो कानून के दायरे में किया। अब अगर जांच में उनकी भूमिका सामने आती है तो कानून काम करे, उसमें न्यास की भूमिका क्या होगी?
1: लेट्स बी ऑनेस्ट, लुकिंग एट द लैंग्वेज ऑफ गोविंद देव गिरी जी, इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक ही वाज डूइंग द बेरेस्ट मिनिमम। उनका बस चलता तो शायद वो इस्तीफा भी नहीं लेते, वो तो उनको मजबूरी में लेना पड़ गया। उन्होंने क्या क्या बोला है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको हम आभार प्रकट किया, हमने उन्हें बोला कि भाई आपने एग्जाम्पल सेट किया है। This is not something that is being done as a favor. This is something, there should have been an element of reprimanding him rather than saying कि आपने इस्तीफा दे दिया, बहुत धन्यवाद।
2: देखिए पंडिया जी, हम लोग पत्रकार हैं और हम लोगों की भाषा बड़ी तीखी होती है। ये संत हैं, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, इनकी भाषा तो आपस में एक दूसरे के लिए कैसे होगी? और मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने जिस न्यास में काम किया उनके उस काम में एक दूसरे के प्रति जिस तरह का रहा होगा, आदर रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर आरोप हैं, न्यास की जिम्मेदारी थी उनको बाहर निकालता। और मैं पहले भी कह चुका हूं, देर हुई, त्यागपत्र और पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन त्यागपत्र लिया गया, कार्रवाई अब होगी। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या कोई अभी तक कोई ऐसा प्रमाण आया जिसमें कहा गया कि नहीं चंपत राय कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे थे, वो बैठे हुए थे, कहते थे अच्छा चलो तुम इतने लाख ले आओ, तुम इतने, मतलब थोड़ा तो सोचना चाहिए। ये कुछ लोग जिनके मन में लोभ लालच आया वो ये काम कर रहे थे, जिसकी निगरानी का जिम्मा श्रीमान चंपत राय के ऊपर था और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, उनको पहले ही त्यागपत्र देना था, देर हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेहतर कदम।
1: डोंट गेट कॉट अप इन द लैंग्वेज आशुतोष।
3: देखिए नहीं पद्मजा, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दूं कि मैं दो दिन से बहुत हैरान हूं। मैं, हर्षवर्धन जी हमारे मित्र हैं, हमारी बात का बुरा ना माने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।
1: कुछ बहुत मीठा कहने वाले हैं, जब भी कोई कहता है ना बुरा मत मानिए, बहुत सम्मान करता हूं, मैं
3: हर्षवर्धन मेरे लिए मेरे छोटे भाई की तरीके से, इसलिए मैं तीखे शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। और वैसे भी अलग, देखिए मैं डिबेट पे जाता हूं, कोई कहता है चंपत राय की तुलना महात्मा गांधी से कर रहा, कल एक पूर्व सांसद मुद्दे जो आरएसएस जुड़े हैं वो लोकमान्य तिलक से कर रहे, कोई मनमोहन सिंह से कर रहा, अभी इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात कर दी। मनमोहन सिंह जी का दूर दूर तक करप्शन से कोई लेना देना नहीं था। हाँ ये बात अलग है, ही प्रेसाइडेड अ गवर्नमेंट विच वाज फुल्ली, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। मैंने कहा साबित तो कुछ नहीं हुआ उसमें। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं है, इसको पूरे मामले को चढ़ावा चोरी में कन्वर्ट किया जा रहा। वहां रिक्रूटमेंट को लेकर जो बहुत बहुत बड़ा स्कैम था वहां पे, ये तो SIT की रिपोर्ट में सारी बातें सामने आ रही हैं। वहां जमीन के लेन देन का मसला चल रहा था कि 2 करोड़ की जमीन को आपने 18.5 करोड़ में बेच दिया। वहां पे जो स्पेशल दर्शन हो रहे थे उसमें घूस खाई जा रही थी। क्या ये रिक्रूटमेंट का काम, ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए, क्या ये लोग जिम्मेदार थे? रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था, किसके कहने पर रिक्रूटमेंट हो रहा था? जो जिस एजेंसी को हायर किया गया, सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया गया, क्या उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में कौन बात करेगा? तो सिर्फ चढ़ावा चोरी का प्रश्न नहीं, मैं मान सकता हूं चढ़ावा चोरी में चोरी हुई, मान लिया मैंने, लेकिन जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने कहा चोरी हो रही, चंपत जी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब ऑडिट ने एजेंसी ने कहा कि इसमें SOP
1: बनाया, दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड, हर्षवर्धन जी सेइंग दैट इज व्हाई ही इज रिजाइंड।
3: लेट मी टेल यू फिर उसके बाद जमीन घोटाले का प्रश्न आया, SIT गठित हुई, SIT की रिपोर्ट कहां है किसी को नहीं मालूम, नोबडी नोस अनटिल दिस डेट, किसी को नहीं मालूम कि चंपत राय का इस्तीफा है कहां, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया भी है या नहीं दिया। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से राम मंदिर के मामले में, चाहे रिक्रूटमेंट का सवाल हो, चाहे जमीन का प्रश्न हो, चाहे चाहे स्पेशल दर्शन का प्रश्न हो, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था।
1: ऑर्गेनाइज्ड बाय हु? आर यू सेइंग दैट चंपत राय ऑर्गेनाइज्ड इट?
3: बिना बड़े लोगों की मिलीभगत से यह संभव ही नहीं था। रिक्रूटमेंट का काम टिन्नू यादव नहीं देख सकता, रिक्रूटमेंट का काम उस जो श्रीवास्तव वो नहीं देख सकता, जो बैंक एम्प्लॉई है, उन्होंने गणना में चोरी की होगी, मैं मान सकता हूं उसको। रिक्रूटमेंट कौन कर रहा था? स्पेशल दर्शन के लिए पैसे कौन खा रहा था? जमीन का घोटाला कौन कर रहा था?
2: अंजय जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी अगर कुछ हमें कह भी देंगे तो मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो छोटा भाई कह रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, तथ्य पर हम बात करेंगे, तीखे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं बिना संकोच के एक बात कह दूं कि आशुतोष जी ने सिर्फ खबरों को पढ़ लिया, जानकारी नहीं ली। जैसे किसी ने कह दिया कि चंपत राय 400 गार्ड के साथ चलते थे, अब चूंकि मैं तो शिलान्यास के पहले, शिलान्यास के समय 1 हफ्ते, प्राण प्रतिष्ठा के समय 1 हफ्ते और दर्शन लगातार मैं करता रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो एजेंसी कौन सी है। भाई चंपत राय जी ने कोई ऐसी एजेंसी नहीं रखी है, वो एजेंसी अलग अलग संस्थानों में काम करती है, ऐसी एक एजेंसी वहां भी है। बाकायदा जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के जरिए है, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं करती, पहले तो ये जानना चाहिए। नंबर एक, वो जो 400 वाला आंकड़ा है ये आशुतोष जी को

0: कहूंगा, एक बार चेक करें अपने कुछ वहां के मित्रों से। दूसरा, जैसे काकभुसुंडी जी गायब हो गए, रामचरितमानस गायब हो गई, हार गायब हो गया, सिल्ली गायब हो गई, ईंटें गायब हो गई, इस तरह का अतिरेक फैलाया गया। तीसरा, मैं देश के हर मंदिर में, चाहे वो सरकारी प्रबंधन में हो चाहे निजी प्रबंधन में, लगभग दर्शन कर चुका हूं। बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा, इतनी शानदार दर्शन की व्यवस्था शायद कहीं मिले। और ये जो कह रहा है वो विशुद्ध झूठ बोल रहा है, वहां स्पेशल दर्शन का अलग से कोई पैसा नहीं लगता है। जहां लाइन में लग के स्मूथ व्यवस्था है कि आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, वहां कौन आदमी है इतना जो 25,000 रुपए स्पेशल दर्शन का दे। किसी ने कह दिया उसको लेके चले गए, कौवा कान ले गया, पता नहीं चला। चढ़ावा चोरी में गड़बड़ हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही 8 लोग हैं, मैं कह रहा हूं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? हम और आशुतोष जी टीवी पर आपके साथ डिबेट करेंगे, इससे पता चलेगा? ये तो जांच से ही पता चलेगा ना।
1: और लोग कौन है, वही तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड टुडे, व्हिच पुलिस पर्सन विल हैव द गट्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ चंपत राय।
0: पद्मजा जी, चंपत राय से 8 घंटे
1: चंपत राय जी को बोली दिया है कि आपके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब कौन पुलिस वाला जाकर के कहेगा कि भाई चंपत जी को कोई मिली भगत हो सकता है?
0: चंपत राय जी से और अनिल मिश्रा से 8 घंटे की पूछताछ हुई है, और ये हम ही लोगों ने चलाया। बाकायदा एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ करके आई, और जो पूछताछ करके आई वही रिपोर्ट में है। अब जो रिपोर्ट का एक्सटेंशन किया गया, क्यों किया गया? पहले तो रिपोर्ट आ जानी थी ना, क्यों उसको समय बढ़ाया?
1: अगर उनसे
0: क्योंकि उसको और जांच करनी
1: ही गई है, तो यानी कि वो भी शक के घेरे में,
0: निश्चित तौर पर
1: अगर वो शक के घेरे में है, तो उनके लिए इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है?
0: नहीं, देखिए पंजाब जी, मैं फिर कह रहा हूं, हम आप वही भाषा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गोविंद देव गिरी जी क्या भाषा इस्तेमाल करेंगे अपने सहयोगी के लिए या चंपत राय जी के लिए, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं?
1: सर, पर अभी तो कुछ टिन्नू यादव के खिलाफ भी
0: उन्होंने क्या
1: तो कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं किया कि आपने अरेस्ट हो करके बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया।
0: दोनों बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है पंजाब जी। टिन्नू यादव एक ऐसा कर्मचारी जो वहां जाता है और जिसने विश्वासघात किया है, या लवकुश मिश्रा, या वो क्या नाम है श्रीवास्तव,
1: आशुतोष तो कह रहे हैं कि किसी और की मिली भगत के साथ विश्वासघात,
0: तो किसी और को खोज
1: के लिए थोड़ा विश्वास,
0: ये आशुतोष जी को या हमें कैसे पता लगेगा?
1: सर, टिन्नू यादव को वॉकी टॉकी किसने दिलाया? क्या किसी की हिम्मत है कि एक ऐसे ही आदमी को, कोई रैंडम आदमी को, वो अपना पुलिस का वॉकी टॉकी दे दे?
0: रैंडम आदमी नहीं है ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, दो चीजें हैं, क्या वो उसमें शामिल थे या उनका इग्नोरेंस था, और इग्नोरेंस था तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस था या क्या था, ये कैसे तय होगा? ये जांच से तय होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चंपत राय जी को सिर्फ इसलिए निशाना लगाना कि एक आदमी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा, एक आदमी राम मंदिर के पूरे निर्माण में जुड़ा रहा, वो संघ का प्रचारक रहा, इसलिए आप निशाना लगाकर कहीं और साधना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, और वो मतलब अपनी तरफ से अगर भरोसा दे रहे हैं, तो या तो आप ये कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं, तो क्या ईडी सीबीआई की जांच कराएंगे? तो वो नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आती है, तो कहां जाके जांच रुकेगी, ये भी बताना चाहिए।
1: लास्ट वन मिनट आशुतोष।
2: देखिए, अब विनय कटियार को तो मैं नहीं बोलूंगा कि संघ विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है या हिंदू विरोधी है, या मैं नृपेंद्र मिश्र को तो नहीं बोलूंगा भाई, विनय कटियार तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का, सरोज जो है दूसरे दुबे जी, वो तो खुलेआम नाम ले रहे हैं, जो जो संघ से जुड़े हुए लोग वही नाम ले रहे हैं, और कुछ हमारे पत्रकार मित्र में जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रहे, तो खुलेआम नाम ले रहे हैं चंपत राय का। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब 2020-21 में महिपाल सिंह ने इस बारे में जानकारी दी, क्यों नहीं चंपत राय ने कार्रवाई की उसके खिलाफ? उसके बाद जब जमीन घोटाले का प्रश्न आया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मेरी 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची जा रही, ट्रस्ट को ही बेची जाए 10 मिनट के अंदर, क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने? और एक ड्राइवर खुलेआम उसकी उसकी उसकी वो अंदर बाहर हो रहा है और काउंटिंग के अंदर अंदर बाहर जा रहा, मतलब ये मैं तो कहता हूं कि अगर अभी तक कोई दूसरी सरकार होती तो चंपत राय को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता, जेल चले गए होते वो। लेकिन चूंकि यहां पर चंपत राय जी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं चंपत राय से कभी नहीं मिला हूं, राम मंदिर के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन जो ये लालच है, ये कब मनुष्य का दिमाग बदल देती किसी को नहीं मालूम।
1: ओके, यू आर आस्किंग फॉर एक्शन, एक्शन हैज बीन टेकन, वेदर इट्स सैटिस्फैक्टरी और सफिशिएंट और नॉट, आई विल लीव इट टू द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, बट आई सस्पेक्ट दिस इज अ डिबेट दैट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल। हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest. I'm delighted to be chairing and be of such distinguished fellow business

0: the resignation of General Secretary Champath Rai. Well, now the meeting also discussed Anil Mishra's resignation, who is also one of the trustees who has now resigned. His resignation has been accepted, with Saints and Seers saying that the incident has raised serious questions of faith. The treasurer, Swami Govind Dev Giri, has acknowledged that a grave error had been occurred and that certain lapses had gone unnoticed. We are getting in a lot of reactions on that political development that took place today. Let's take a look at some of them.
1: हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया, जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार, त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
2: जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
3: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्याग पत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
4: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर जो घटना घटी है, ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है और करोड़ों लोगों का विश्वास कायम रहे, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, आस्था और उनका भरोसा कायम रहे, तो इसके लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और अयोध्या तो वो धरती है जो हर वक्त अग्नि परीक्षा मांगती है। जहां सीता मां की भी अग्नि परीक्षा हुई, तो ट्रस्ट की अग्नि परीक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं।
0: And cutting across to other big stories that we are tracking on this edition, and this one has created a big talking point across the country. This is about Diljit Dosanjh's latest movie, Satluj. After years of delays and controversies, Diljit Dosanjh's long-awaited film, Punjab 95, which was later released on Z5 under the new title Satluj, has been taken down from streaming platform in India. And this happened just 2 days after its release. Now, as per sources, the decision to take down Satluj was taken after a careful review. The film had earlier applied for a theatrical release but was not approved in the form in which it was submitted. Sources say that the concerns were raised over certain portions of the film. Diljit Dosanjh has now broken silence, since he is the main protagonist of the movie, on the ban, with a cryptic social media post saying, and I quote, "I challenge the darkness." He also said that now the film will not be stopped and Kalra's voice cannot be silenced. Meanwhile, what's also happened is that advocate Vineet Jindal has now approached the Ministry of Home Affairs alleging that the film spreads misinformation and promotes sympathy for terrorism. Here is what Diljit Dosanjh has to say on the full controversy.
5: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
0: And even as the controversy surrounding Satluj continues, the film has found an unexpected audience in rural Rajasthan. Watch this visual where Anupgarh district, an entire village, came together for a community screening on a giant screen with locals saying that the film's message on justice and human rights should reach more people. The event has now gone viral after actor Diljit Dosanjh shared pictures and videos from the screening on social media, reigniting the debate over the film and the calls to ban the lift.

0: यह त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था।
1: जब तक नायक महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे।
2: जो भी दोषी पाए जाए उन्हें कड़े से कड़ा दंड

0: Night on India Matters. Thank you very much. Viewer, the country has barely washed the unsettling stain of the Twisha Sharma suicide from its mind when we are presented with another horror, this time from the heart of India's national capital. 28-year-old Akriti Sutar, that's her you see on your screen, was married for just 72 days before she fell to her death this weekend from a third-floor flat in South Delhi's upscale Lodhi colony. It doesn't get more central than that. Akriti was a young professional working as a sales executive. Hours before her death on Saturday evening, she had actually attended her office and even hosted a small post-wedding celebration for her colleagues. Her mother and family have since come forward with horrific allegations of relentless domestic abuse and belt beatings by her husband, Arastu Sikka. They claim she was constantly taunted for not bringing enough from her parental home alongside a brutal demand for 20 lakh rupees in dowry. While the police are investigating digital evidence and search history for a suicide angle, her family strongly maintains she was mentally strong and rejects anything other than their daughter being murdered. What makes this tragedy sting even sharper is that it comes in the heart of the national capital, mere weeks after the country was shaken by the case of actor-model Twisha Sharma, like I said, in Bhopal. Twisha was found dead just 6 months into her marriage to a lawyer whose mother happens to be a retired district judge. When you look at the raw numbers, the reality is staggeringly bleak, and I'm repeating these numbers for the second time in less than 2 months. National Crime Records Bureau data shows that India recorded 5,737 dowry deaths in 2024 alone, the last year for which that data exists. That translates to an average of 16 women dying every single day in our country because of marital harassment and financial greed over dowry. The terrifying truth these back-to-back tragedies reveal is that dowry is completely and utterly entrenched across every stratum of Indian society. Akriti and her husband had been in a relationship for 8 years before their love marriage on April the 24th. We love to believe that childhood friendships, long-term love stories, and deep family associations offer some kind of immunity, a shield. We think if people truly know each other, their families know each other, they are insulated from this malice. But these cases prove that the moment the wedding festivities end, a dark switch flips. No amount of prior love or generational familiarity seems to protect women like Akriti from the transactional nature of greed. There was Twisha, now it's Akriti. And there are statistics now, like the 15 others that died the same day and for the same reason that they did. Here are some big questions that I need to ask tonight, because the death of Akriti Sutar is not just any other death. Akriti had informed her mother that she had left from office to home on Saturday, the evening that she actually died. The same day she had hosted a party for her colleagues in the office to celebrate her wedding, which had taken place 2 months before. Soon after, Akriti's phone was switched off after she spoke to her mother. Her husband, Arastu Sikka, accused Akriti's family of hiding her during their marital time. Akriti was found lying on the ground, lifeless, in Lodhi colony after apparently falling from the third floor. Her family say she was pushed. She was rushed to the AIIMS Trauma Center, where she was pronounced dead. Injuries were found on Akriti's left arm and thigh. The family has completely rejected the suicide claim, and they have accused the husband of murder. So the big questions I am asking tonight are, why no bloodstains where Akriti's body was apparently found? This has been documented. Why would Akriti die by suicide if she threw a party just hours before that in her office to celebrate her wedding? What explains the injury marks on Akriti's body? Akriti spoke to her mother just 2.5 hours before the death. What happened in those final hours? These are questions that will be a matter of investigation, because, like I said, Akriti Sikka died on Saturday, just 2 days ago. I'm joined now by Amay Sutar, who is Akriti's brother. And he joins me live now from the national capital. Amay, ये एक बहुत मुश्किल दौर है आपके लिए और आपके परिवार के लिए. तो पहले मैं आपको मेरे ये बहुत दुखद घटना है और मैं अपने कंडोलेंसेस कन्वे करता हूँ आपको और आपके परिवार को. मेरा पहला सवाल है हमें कि सैटरडे को क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या आप बता सकते हैं? आकृति ऑफिस गई थी उस दिन, कुछ सेलिब्रेशन भी था उसके ऑफिस में, उसके बाद माँ से बात हुई थी, क्या आप बता सकते हैं डिटेल में क्या हुआ था उस दिन?
1: एक्चुअली सर, उस दिन जो मॉर्निंग में मेरी सिस्टर जो है वो ऑफिस के लिए निकली थी. मेरी सिस्टर को एक्चुअली ऑफिस 3 मंथ बाद उसने अपने ऑफिस को कंटिन्यू किया था. तो जब फर्स्ट डे वो 1 तारीख को ऑफिस गई थी तो उसने पार्टी देने की सोची थी ऑफिस में. तो उसने बोल भी रखा था कि मैं आप सबको पार्टी दूंगी अपने मैरिज की. तो मेरा मानना ये है कि अगर वो ऑफिस, हाँ एक्चुअली वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जो ऑफिस निकली तो उसने मेरी मदर को फ़ोन करके बोला कि मेरी मम्मी को कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मतलब ऑफिस के लिए, ऐसे बोला उसने. फिर फ़ोन कट किया. फिर इवनिंग में उसने पार्टी दी. बट मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी अपने कलीग्स को अगर कोई भी वादा कर चुका है कि मैं पार्टी दूंगा या कुछ भी है तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा हो पहले से, तो वो फिर भी अंदर मतलब अपने घरेलू दिक्कत या फिर अपने अंदर की चीज़ें की कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. जैसे मैं भी नहीं करता या कोई भी नहीं करता, तो मेरी सिस्टर भी उस टाइम क्यों करती? और मेरी सिस्टर ने अगर वहाँ पार्टी दी, इसका मीन ये नहीं बनता ना कि वो खुश थी या फिर उसका उसके मेंटली कोई प्रेशर नहीं था. ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सब अपना अपना प्रेशर अंदर रखते हैं, कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता. और रही बात मेरी जो सिस्टर है, उस दिन उसने पार्टी दी और इवनिंग में जब वो ऑफिस से 6 बजे निकली, 6:18 पे उसने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोला कि मम्मी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, मैं अभी फ़िलहाल निकल के बैठ गई हूँ, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, मीन अपने ससुराल जा रही हूँ. बट उसके ही एक घंटे बाद करीबन हमारे पास कॉल आया कि आधे एक घंटे बाद कि आपकी बेटी कॉल नहीं उठा रही. उसके कुछ देर बाद मेरी मम्मी ने मेरे को कॉल किया, मैं ऑफिस में था, तो बोला कि आकृति मतलब कि बेटा कॉल करो, आपकी मतलब बहन जो है कॉल नहीं उठा रही है, उसको कॉल करो उनको. मैंने बोला ओके मैं कॉल करता हूँ. तो मैंने कॉल किया तो तब भी कॉल नहीं लग रहा था उसका. हमने फिर उसको करीबन एक घंटे तक करीबन ट्राई किया. फिर मैं घर गया, फिर घर जाके उसके ऑफिस वगैरह के पेपर वगैरह निकाले, सब जगह ट्राई किया, सब जगह सर्च किया, उसके ऑफिस में भी बाहर भी, हमारे सारे फ्रेंड्स जो थे हम सर्चिंग में लग गए. तो करीबन 10 बजे के आसपास, 9:30 से 10 के बीच में हमने एक लास्ट कॉल ट्राई करी आखिरी, मतलब मेरे सिस्टर के फ़ोन पे मेरे फ्रेंड ने. जब लास्ट कॉल उन्होंने ट्राई करी तो तब पता चला कि ये जो कॉल है वो पिक करी गई थी लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में. और जब लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कॉल पिक करी गई तो उन्होंने बताया कि आपकी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप जो है लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन आ जाइए. हम लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन जैसे पहुँचे तो उनने हमें ये बताया कि आपकी जो सिस्टर है उनने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करी और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और बाकी कोई भी इसके अलावा कोई भी हमारे पास खबर आती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. उसके करीबन 1 घंटे तक हमको कुछ नहीं बताया गया. 1 घंटे बाद जब उनके जो हस्बैंड थे अरस्तु, वो जब पहुँचे, उनसे जब पहुँचने के बाद कुछ पूछताछ उनने करी रूम में बिठा के, पूछताछ करने के कुछ देर बाद हमको बताया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे. फिर उसके बाद हमें जब बताया गया तो तब मतलब हम कुछ सोचने की हालत में नहीं थे, कि कुछ कहने की हालत में, तो तब हम कुछ नहीं कर सके.
0: आपका कहना है हमें कि ये सुइसाइड नहीं था, ये मर्डर था, आपका परिवार ये कह रहा है, ऐसा क्यों है? और पिछले 2-3 महीने में ऐसा कुछ सामने आया था कि कुछ डाउरी को लेकर कुछ हैरेसमेंट था, कुछ मांगे थी इस परिवार का?
1: देखो सर, मैं क्लेरिफाई करता हूँ आपको कि एक्चुअल में जो मेरी सिस्टर थी वो पहली बात तो इतनी मेंटली स्ट्रांग थी कि वो कभी भी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकती. मैं मानता हूँ कि चलो अगर पहले भी ना हो, बट लाइफ के साथ साथ इंसान की अंदर के मेंटलिटी से लेके स्ट्रांगनेस सब चेंज होती.